प्रकृति हमारे लिए जिस कर्तव्य का विधान करती है उसका विरोध करना व्यर्थ है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसी कारण उसे छोटा नहीं कहा जा सकता। कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं। देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कर्तव्य किस भाव से करता है। भिन्न भिन्नाते रहने वाले पुरुषों के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे कभी किसी चीज से संतोष नहीं होता और फलस्वरूप उसका जीवन दुभर हो उठना और असफल हो जाना स्वाभाविक है। हमें चाहिए कि हम कार्य करते रहें, जो कुछ हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें, अपना कंधा सदैव काम से भिड़ाए रखें, तभी अवश्य हमें प्रकाश की उपलब्धि होगी।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपके अपनी आरजे याजू। आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। हमारे स्टूडियो की घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुके हैं हमारे आज के प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज है साल 2026 अगस्त महीने का मंगलवार दिन और तारीख है 18। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक पी दोले और तकनीकी अभियंता एचआर ब्रह्मा। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरूआत करते हैं।

चलिए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले प्रोग्राम्स पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। 6:40 सुनिए कालो दैलिक न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां आपको मिलेगी योगा एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी।

7:10 सुनिए आप अतानी दैलिक न्यूज। 7:15 रहेगा मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम, जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:35 सुनिए ताकि दैलिक न्यूज।

7:40 पेश है सदाबहार सूदिंग म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8:00 सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्रीय समाचार। 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में।

8:30 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर की खास खबरों के साथ 8:40 सुनिए हेलो ईटानगर इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स। 9:00 फिर से हिंदी न्यूज़।

9:05 रहेगा इंग्लिश न्यूज, 9:10 एंजॉय कीजिए फिल्मी गपशप, जहां होंगे बॉलीवुड अपडेट्स, मूवी रिव्यूज, ओटीटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट की बातें। 10:10 शुरू होगा रेडियो ऑन डिमांड, जहां बजेंगे आपके पसंद के गाने और स्पेशल रिक्वेस्ट। तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ, क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों कहीं मत जाएगा, क्योंकि अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जीएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग

0: 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग ने बिलासपुर कांगड़ा मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरुला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। वहीं उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमा की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुस्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरियत तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टा से मुकाबला करेंगे। FIH महिला हॉकी विश्वकप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. In Jharkhand, following a 24-day protest by JPSC and JSSC aspirants, the state government has cancelled the 2024 JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency. Chief Minister Hemant Sorin announced the decision last evening after chairing a special cabinet meeting. The state government has also ordered a comprehensive probe into recruitment examinations conducted by the Jharkhand Public Service Commission or JPSC and the Jharkhand Staff Selection Commission or JSSC since 2014. However, student leader Piyush Kumar stated that the protesters' demands regarding the 11th to 13th JPSC examinations and a CBI probe are still pending. The protesting students announced they would discuss their remaining demands and decide their next course of action. Education Minister Prahlad Joshi held a meeting with the Secretary, Department of Higher Education, DG of National Testing Agency and other senior officials in New Delhi yesterday. During the meeting, the minister directed that strict compliance be ensured of the established exam protocols. He also directed that a complete overhaul of confidential operations architecture, secluded rooms, air-gapped systems, device deposit protocols be implemented on a war footing. The agency has been further directed to conduct a thorough audit of all exam processes and submit a report on corrective action taken. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with state police forces to counter Shehzad Bhatti network-linked disruptions. The network was involved in several terrorist activities. Shehzad Bhatti Network, a Pakistan-based

0: दोस्तों, ये था भक्ति गीत। उम्मीद है इन मधुर सुरों ने आपके मन को शांत और दिन को एक पॉजिटिव शुरुआत दी होगी। यह आकाशवाणी टनल करोर एफ 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, कहीं मत जाएगा, क्योंकि अब आप सुन पाएंगे कालो पाशा में समाचार।
1: से आकाशवाणी ईटानगर तनकदम रोकम चाब सोपोल ग लोरी गोला अलोपिनन अरसोगन नुक तलुरु नम कालो मेंकिन अगु मेंजिदु मेंकिन मेंजिन से कोई जर्दो 34 तुतिंग यिंक्योंग एमएलए आलो लुबंग यिंक्योंग टाउन लो कैलुन प्रोजेक्ट आउम गो मरोगा लोलो मोकोक्तु सगो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज वेंडर मार्केट ओके एकेडमिक बिल्डिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लो लोक मोकोक्तो इजग सोक आउम प्रोजेक्ट मोकोक्दु को सगो डिस्ट्रिक्ट अरा सगो कैरूब लापम पार लापम लामेंतु अकेन वास्ट मैनेजमेंट लो अलुब काकेन बकु सिस्टम लोक अगर गर्नम असुमान्यान दोतु दोरो ओके कोसुकोरोम अलुब अदगब अला सगो अगर गर्गनम सोक अरा लोक रिगर ओके बेंदर गुक निकम गदक इजिओ पुको अमचिन ने काकेन रुब सिस्टम लोक मोदुकुला बुनुक यसेरा पुंगनम अमचिन काकेन याब इजिओ अम रिला आइन मुरको पाया दोब सोक अरा लोक रिगर को अम ला मेंकिंतु ओक एकेडमिक बिल्डिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल यिंग क्योंग सिगम

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कालो भाषा में हमारा खास समाचार बुलेटिन। और अब वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा और ताजगी से भरे प्रोग्राम का। जी हां, सुबह सवेरे आप सभी प्यारे श्रोताओं को एक बेहद खूबसूरत, सुनहरी और सेहतमंद सुबह मुबारक। उम्मीद है आपकी ये सुबह एक नई उमंग और नए जोश के साथ शुरू हुई होगी। पता है दोस्तों, हर नया दिन हमारे लिए एक कोरा कागज होता है और इस कागज पर हम अपनी अच्छी आदतों से एक बेहद खूबसूरत जिंदगी की कहानी लिख सकते हैं। और जब बात दिन की शुरुआत की हो तो हमारी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसीलिए तो आपका ये दोस्त हर दिन लेकर आता है ढेर सारी ऐसी बातें जो आपके चेहरे पर मुस्कान भी लाए और आपको फिट भी रखे। तो चलिए इस प्यारी सी सुबह का स्वागत करते हैं एक बेहद ही खूबसूरत गाने के साथ। आप सुनिए ये पहला गाना और मैं बस अभी हाजिर होती हूँ सेहत के कुछ अनमोल मंत्रों के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुबह सवेरे। दोस्तों, अक्सर जब हम योगा या एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वही पुराने आसन और स्ट्रेचेस हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन आज हम कुछ बिल्कुल अलग बात करेंगे। सेहतमंद रहने के लिए जरूरी नहीं कि आप घंटों मुश्किल आसन करें या हैवी वेट उठाएं। सबसे पहले बात करते हैं एक बेहद असरदार एक्सरसाइज की, जिसे कहते हैं कैटकाउ मोबिलिटी स्ट्रेच। अगर सुबह उठते ही आपकी पीठ या कमर में जकड़न लगती है तो जमीन पर दोनों हाथ और घुटने टिकाकर बैठ जाए और अपनी पीठ को ऊपर नीचे मूव कीजिए। यह आपकी स्पाइन को मक्खन जैसा लचीला बना देता है। इसके साथ ही आप खड़े खड़े 2 मिनट के लिए स्पॉट मार्चिंग या जॉगिंग कर सकते हैं। ये बिना घर से बाहर गए आपके हार्ट रेट को पंप करता है और सुबह का आलस बिल्कुल गायब कर देता है। अब आते हैं हमारे योगा सेगमेंट पर। क्या आपने कभी सूक्ष्म व्यायाम के बारे में सुना है? इसे हम माइक्रो एक्सरसाइजेस भी कहते हैं। हमारे शरीर के छोटे छोटे जॉइंट्स, जैसे हमारी उंगलियां, कलाइयां और गर्दन, इन्हें सुबह सुबह हल्का से रोटेट करना हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अगर आप दिन भर कंप्यूटर पर बैठे हैं या खेत बाड़ी का काम करते हैं तो सुबह सिर्फ 5 मिनट अपने जॉइंट्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। यह आपके ब्लड सर्कुलेशन को और एनर्जी को तुरंत बूस्ट कर देता है। और चलिए एक और कमाल की चीज बताती हूँ, त्रातक क्रिया, या इसे आई योगा भी कहते हैं। सुबह उठकर किसी एक चीज पर या सुबह के हल्का सूरज पर बिना पलके झपकाए फोकस करिए जब तक आंखों में थोड़ा पानी ना आ जाए। आजकल स्क्रीन देख देख कर हमारी आंखें थक जाती है और ये सिंपल सी एक्सरसाइज आपकी आईसाइट और फोकस दोनों को बेहतर बनाएगी। चलिए, इस यूजफुल टिप के बाद वक्त हो चला है एक और बेहद खूबसूरत गाने का।

दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरे। दोस्तों एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ पसीना बहाना नहीं होता बल्कि अपने शरीर के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना होता है। आज का मेरा सबसे बड़ा हेल्थ टिप्स पता है क्या है? वो है माइंडफुल वॉकिंग और सर्कैडियन रिदम यानी प्रकृति के चक्रधार चलना। सुबह जब आप वॉक पर निकले तो अपने कानों में हेडफोन मत लगाइए, अपने आसपास की चिड़िया की चहचहाहट सुनिए, ठंडी हवा को महसूस कीजिए और हाँ अगर हो सके तो थोड़ी देर घास पर नंगे पैर चलिए जिसे हम अर्थिंग भी कहते हैं। ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को जमीन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको पूरे दिन के लिए काम और हैप्पी बनाता है। इसके साथ ही अपनी सुबह की शुरुआत किसी कोल्ड ड्रिंक या सीधे चाय से करने के बजाय बल्कि हल्का गुनगुना पानी पीकर करें। ये आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। सेहत की इन प्यारी बातों के साथ अब वक्त हो चला है हमारे आज के अगले गीत का।

दोस्तों, उम्मीद है आज के गाने और हमारे सेहत की बातें आपको पसंद आई होंगी। याद रखिए, एक सेहतमंद शरीर में ही एक खुशहाल दिमाग बसता है। अपने लिए रोज सुबह थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिए।

अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। हम फिर मिलेंगे ठीक इसी वक्त इसी स्टेशन पर लेकर आपका अपना शो सुबह सवेरे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए और सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम।

दोस्तों ये था कार्यक्रम सुबह सवेरे। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा और अपने आप को थोड़ा और फ्रेश महसूस कर रहे होंगे। ऐसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब सुनिए आप बताने दालिक न्यूज, अपनी भाषा में अपने क्षेत्र की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे या पता नहीं दैनिक में न्यूज बुलेटिन। और एक बेहद खूबसूरत और नई सुबह में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू, लेकर आई हूं आपका मनपसंद सुबह का शो मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। चाय की प्याली हाथ में लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट हम साथ में घूमेंगे इतिहास के दिलचस्प पन्नों पर और साथ ही रूबरू होंगे आज की ताजा तरीन खबरों से। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं दुनिया के इतिहास से। दोस्तों, 18 अगस्त का दिन विश्व इतिहास में कई महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया था। आज ही के दिन 1920 में अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में 19th अमेंडमेंट को मंजूरी मिली थी, जिसने महिलाओं को उनका वोटिंग राइट दिया। ये दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण और इक्वालिटी के लिए एक लैंडमार्क माइलस्टोन बना। फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर पियर जेंसेन ने सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स ऑब्जर्व करते वक्त सूर्य का स्पेक्ट्रम से पहली बार हेलियम गैस की खोज की थी 1968 में, एक ऐसी डिस्कवरी जिसने पूरे एटॉमिक और स्पेस साइंस को नई दिशा दी।

आज ही के दिन 1977 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एसएप हॉल ने रेड प्लैनेट यानी मंगल ग्रह के सबसे बड़े मून फोबोस को ढूंढा था। यूनिवर्स के राज हमेशा से ही इंसानी दिमाग को हैरान करते रहते हैं। आज ही के दिन 1940 में बैटल ऑफ ब्रिटेन का सबसे बड़ा और डेडलीस्ट एरियल बैटल आज ही लड़ा गया था, जिसमें आरएएफ और जर्मन लुफ्टवाफे के बीच आकाश में इतिहास की सबसे भीषण हवाई लड़ाई देखी गई थी।

बरसों इतिहास की जरोगे के बाद अब आते हैं हमारे स्टेट और हमारे भारत के इतिहास की तरफ। 18 अगस्त का दिन भारत के लिए भी बेहद यादगार है। मराठा साम्राज्य के महान सेनापति और योद्धा पेशवा बाजीराव एक का जन्म आज ही के दिन 1700 में हुआ था। अपने जीवन काल में 41 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ने के बाद भी वो हमेशा अजय यानी अनडिफीटेड रहे। 1900 में स्वतंत्रता सेनानी और यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली विजया लक्ष्मी पंडित का जन्म हुआ था। उन्होंने ग्लोबल लेवल पर आजाद भारत की आवाज को सम्मान के साथ बुलंद किया। आज ही के दिन 1951 में एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने वेस्ट बंगाल के कारकपुर में भारत के पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का फॉर्मल इनॉग्रेशन किया था, जिसने देश के इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर की नींव रखी। 1945 में ताइहोको एयरपोर्ट पर नेताजी के विमान क्रैश के घटना दर्ज हुई, जिसके बाद से उनके लापता होने का राज आज भी हर भारतीय के दिल में एक अनसुलझा प्रश्न बना हुआ है।

दोस्तों इतिहास के झरोखे के बाद अब आते हैं हमारे स्टेट और रीजन के सबसे अहम हलचल पर। नजर डालते हैं दी अरुणाचल टाइम्स के मुख्य समाचारों पर पूरी तफसील के साथ। द अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइंस है टीएमपी के अनाउंसेस कंप्लीट विथड्रॉवल ऑफ इकोनॉमिक ब्लॉकेड फॉलोइंग मीटिंग विद सीएम। ताकाम मिसिंग पोरिंग केबांग ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ चल रहे अपने अनिश्चितकालीन इकोनॉमिक ब्लॉकेड को पूरी तरह से वापस लेने का ऐलान कर दिया है। बॉर्डर एरिया पर हुए फायरिंग इंसिडेंट और इंटर स्टेट बाउंड्री इश्यूज को लेकर चीफ मिनिस्टर के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद ये डिसाइसिव फैसला लिया गया। सरकार की तरफ से फेयर इन्वेस्टिगेशन और पीसफुल सेटलमेंट के स्ट्रांग अश्योरेंस मिलने के बाद सप्लाई रूट्स और व्हीकुलर मूवमेंट्स को नॉर्मल ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है, जिससे दोनों राज्यों के कॉमन कम्यूटर्स और ट्रेडर्स को बड़ी राहत मिली है। बैन इफेक्ट्स नॉर्मल लाइफ इन पार्ट्स ऑफ अपर सुबनसिरी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बुलाए गए बनकोल के चलते अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों में आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, लोकल मार्केट्स और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप रहे थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने और किसी भी ऑन टूअर इंसिडेंट को रोकने के लिए सेंसिटिव लोकेशन पर टाइट सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की थी। हालांकि इमरजेंसी और एसेंशियल सर्विसेज को बांध के असर से बाहर रखा गया।

Postal Department yet to comply with order against alleged fraudulent transaction, family alleges. एक पीड़ित परिवार ने पब्लिक ग्रीवेंसेस उठाते हुए पोस्टल डिपार्टमेंट के फंक्शनिंग पर सवाल खड़े किए हैं। परिवार का आरोप है कि ब्रांच में हुए एलएच फ्रॉडुलेंट फंड ट्रांजैक्शन के खिलाफ कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा इन्वेस्टिगेशन और रेमेडियल एक्शन के क्लियर ऑर्डर्स दिए जाने के बावजूद डिपार्टमेंट ने अभी तक उन गाइडलाइंस को कम्प्लाई नहीं किया है। फैमिली ने हायर अथॉरिटीज से इंटरवीन करके इमीडिएट रिकवरी और अकाउंटेबिलिटी तय करने की गुहार लगाई है। दसुंगला पुल कॉल्स फॉर ट्रांसपेरेंसी इन सेलेक्शन ऑफ पीएमएवाईजी बेनिफिशियरीज। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के इफेक्टिव एग्जीक्यूशन पर जोर देते हुए मिनिस्टर दसुंगला पुल ने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हाउसिंग स्कीम्स के बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन और सेलेक्शन प्रोसेस में स्ट्रिक्ट ट्रांसपेरेंसी और फेयर अप्रोच होनी चाहिए ताकि जीरो करप्शन के साथ सही मायने में डिजर्विंग और अंडर प्रिविलेज लोगों

0: APCC accuses BJP of partisan protests, questions silence on border issues. Arunachal Pradesh Congress Committee ne ruling BJP sarkar par nishana sadha hai. APCC ne aarop lagaya ki party selective muddon par political mileage lene ke liye partisan protest organize kar rahi hai, jabki critical border security concerns aur border areas mein rehne wale logon ke ground issues par puri tarah khamosh hai. Opposition ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से क्लियर अकाउंटेबिलिटी और डायनेमिक बॉर्डर डेवलपमेंट प्लान प्रेजेंट करने की मांग की है.
1: The best gift for papa mummy.

तो दोस्तों ये था आज के दिन के अहम ऐतिहासिक पन्नों और डियर नेचुरल टाइम्स के मुख्य समाचार। आपका ये सुबह का सफर कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो नंबर पर हमें जरूर बताएगा। मैं लौटती हूँ एक छोटे से पॉज के बाद ढेर सारे एंटरटेनमेंट और मौसम के हाल के साथ। बने रहिए मॉर्निंग हमारे साथ दोस्तों। अब आप सुन पाएंगे तागिन भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी जानगर कार्यक्रम में।

दोस्तों आप सुन रहे थे तागिन दालिक में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। सुबह की ठंडी हवा खिड़की के बाहर धीरे धीरे उतरता कोहरा और एक प्याली गर्म चाय, इससे बेहतर शुरुआत भला क्या ही हो सकता है। नमस्कार, आदाब और शुभ प्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे सबसे सुकून भरे प्रोग्राम सदभार में। दोस्तों, यहां वक्त थोड़ा ठहर सा जाता है, यादें ताजा होती है और पुराने गीतों के सुर दिल को छू लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो इस सुहाने सुबह को और भी मीठा बना दे।

दोस्तों, संगीत सुनकर दिल वैसा ही हल्का हो जाता है ना। चलिए अब जरा खिड़की से बाहर देखिए और बात करते हैं हमारे अपने शहर ईटानगर के मौसम की। अगर आप सुबह वॉक पर निकल रहे हैं या ऑफिस कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं तो छतरी साथ रखना मत भूलिएगा। IMD अरुणाचल प्रदेश सेंटर के अनुसार आज ईटानगर और आसपास के कैपिटल कॉम्प्लेक्स इलाकों में बादल छाए रहेंगे। सुबह का मिनिमम टेम्परेचर लगभग 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर तक मैक्सिमम टेम्परेचर 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफी हाई है, लगभग 88% से 90% के बीच, जिससे दोपहर में थोड़ी चिपचिपी गर्मी और उमस महसूस हो सकती है। IMD का कहना है कि आफ्टरनून और इवनिंग के वक्त लाइट से मॉडरेट रेन या सडन थंडर शावर्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप गाड़ी

या स्कूटी पर निकल रहे हैं गंगा मार्केट या नाहरलगुन स्ट्रेच पर, तो थोड़ा आराम से चलाइए क्योंकि रोड्स पर स्लिपरी कंडीशन बन सकती है। इस भीगे भीगे मौसम के बीच एक और खूबसूरत नगमा।

0: Suzuki Brezza comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों, दिल को छू लेने वाले धुन के बाद चलिए अब एक लंबी नजर डालते हैं हमारे खूबसूरत पहाड़ी राज्य पूरी अरुणाचल प्रदेश के मौसम पर। मॉनसून अभी पूरी तरह से एक्टिव है और आईएमडी के स्टेट बुलेटिन के मुताबिक अगले 24 घंटों में राज्य के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मौसम का रूप कैसा रहेगा, आइए डिटेल में समझते हैं। फुट हिल्स और वैली डिस्ट्रिक्ट जैसे पापुमपारे, ईस्ट सियांग, चांगलांग, तिरप, नामसाई, इन लोअर एलिवेशन इलाकों में हैवी मॉइस्चर लेवल्स और वार्म टेम्परेचर बना रहेगा। पासीघाट और नामसाई बेल्ट में मॉडरेट से हैवी रेनफॉल के स्पेल्स देखने को मिल सकते हैं। नदियों के आसपास रहने वाले लोग जरा सतर्क रहें क्योंकि रिवर वाटर लेवल्स तेजी से ऊपर नीचे हो सकते हैं। मिड हिल्स एंड सेंट्रल रीजन जैसे वेस्ट सियांग, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, पाके केसांग, जीरो और दापोरिजो जैसे इलाकों में हल्की धूप छाव के बाद आफ्टरनून आवर्स में तेजी से क्लाउडी कंडीशन बनेगी। यहां कंटिन्यूस लाइट रेनफॉल और थंडर शावर्स होने की पूरी संभावना है। हाई अल्टीट्यूड डिस्ट्रिक्ट जैसे तवांग, वेस्ट कामेंग, अपर सियांग, दिवांग वैली, अंजाव, इन जैसे जगहों के हिली पासेस पर घना कोहरा और लो क्लाउड कवर रहेगा जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है। ठंडक थोड़ी बढ़ेगी और इंटरमीडिएट रेनफॉल का दौर जारी रहेगा। अगर आप बालुकपोंग बोमदिला तवांग हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं तो फोग और मद स्लीप्स को ध्यान में रखकर ही सफर करें। आईएमडी ने राज्य के आइसोलेटेड पॉकेट्स में हैवी शावर्स और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी रास्तों पर ट्रैवल करते वक्त लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में एक्स्ट्रा कॉशन बरतें और अननेसेसरी ट्रैवल को इवनिंग आवर्स में अवॉइड जरूर करें।

दोस्तों, सुनहरे गाने और मौसम की मीठी सी खबर, यही तो है हमारी सदाबहार की पहचान। आप चाहे घर पर बैठकर फैमिली के साथ गरम पकोड़े और चाय एंजॉय कर रही हो, या अपने काम पर निकल रहे हो, अपना और अपने अपनों का पूरा ख्याल रखिए, मौसम का लुफ्त उठाइए और दिल में हमेशा उम्मीद और संगीत बनाए रखिए। मैं लेती हूं आप सभी से विदा, पर संगीत का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आपके अपने रेडियो स्टेशन के साथ, यह आकाशवाणी टानर कारण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। दोस्तों, कहीं मत जाएगा, क्योंकि अब आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल

0: परीक्षा 2024 और TDPL एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी डिटेल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद कैबिनेट ने जैसी डिटेल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और JPSC JSSC न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की CBI जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद JSSC CGL के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने ये सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमेरिकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। ये प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की ये परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो

0: कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
1: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
2: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
3: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी यू की को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से

0: छात्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्ता ने नाग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यू को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। झारखंड गवर्नमेंट कैंसल्स जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन आफ्टर 24-डे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। ऑल्सो कैंसल्स ऑल अदर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द प्राइवेट एजेंसी टीडीपीएल। U.S. President Donald Trump praises India's voter ID system, hails it as a model for stricter U.S. election rules. India to host 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today. Indian Army Chief General Dhiraj Seth conferred rank of Honorary General of Nepal Army by President Ramchandra Podail in Kathmandu. IMD issues red alert for a very heavy rainfall in Jharkhand today. And Ayush Shetty stuns world number one and defending champion Shi Yu Qi in first round of men's singles at BWF Badminton World Championships in New Delhi. And now the news in detail. Jharkhand government has cancelled JSSC CGL examination after 24-day students' protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by the private agency TDPL. The announcement triggered celebrations at the protest site in Ranchi, though the demand for a CBI probe remains unresolved. We have a report.
3: The Jharkhand government has decided to cancel the JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency, besides announcing a probe into recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. The decision was taken at a special cabinet meeting chaired by Chief Minister Hemant Soren and was welcomed by protesting students at the Jaipal Singh Munda Stadium, who celebrated by distributing sweets and applying gulal. The government has also decided to investigate recruitment processes conducted by JPSC and JSSC from 2014 onwards and constitute a committee headed by IAS Officer Amitabh Kaushal to recommend reforms in the examination system. Meanwhile, Minister Deepika Pandey Singh and Health Minister Irfan Ansari, along with MLA Jairam Kumar, visited Sadar Hospital and ended the hunger strike of Devendranath Mehto and other protesting students by offering them juice. Devendranath Mehto thanked the government and said the decision addressed major demands with the JPSC-JSSC Nyaya Munch announcing that it was suspending its agitation for now. Student leader Ravindra Paswan thanked the government for the decision but said the reform munch would continue its agitation until a CBI

वेलकम बैक दोस्तों। और अब दिल्ली और शिलांग से जुड़ी जरूरी खबरों की बात, वक्त है एक नए सफर का, एक ऐसा सफर जहां हर दिन की तरह आज भी हम जानेंगे कुछ नई बातें, कुछ उपयोगी जानकारियां, कुछ दिलचस्प कहानियां और साथ ही सुनेंगे आपके पसंदीदा गीत। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू हो रहा है आपका अपना, आपके अपने शहर से जुड़ा हेलो ईटानगर, जहां बात होगी जानकारी की, शिक्षा की, रोचक तथ्यों की, बात होगी उन कहानियों की जो हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर करती है, और बात होगी उन छोटी छोटी चीजों की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बना सकती है। मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू और आज के इस सफर में आपके साथ हूं। दोस्तों आज की तारीख है 18 अगस्त और आज के हेलो ईटानगर की शुरुआत हम कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत और हौसला देने वाले विषय के साथ। आज है नेवर गिव अप डे, यानी कभी हार ना मानने का दिन। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों एक पूरी तारीख को सिर्फ एक छोटे से संदेश के नाम किया नेवर गिव अप? आखिर इस दिन के पीछे की कहानी क्या है और 18 अगस्त ही क्यों? आज के हेलो ईटानगर में इस कहानी को थोड़ा विस्तार से समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले पेश है ये सुनहरा गीत आप सभी के लिए।

दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो ईटानगर। दोस्तों नेवर गिव अप डे की शुरुआत 2019 में एलेन होरोइट ने की थी। एलेन होरोइट को इस मूवमेंट के साथ इतना जोड़ा गया कि उन्हें अक्सर मिस्टर नेवर गिव अप भी कहा जाता है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है कि इस दिन की शुरुआत किसने की। सवाल ये है, एलेन होरोइट को ऐसा दिन शुरू करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसके पीछे उनका अपना जीवन अनुभव था। उनकी जिंदगी में भी असफलताएं आई, मुश्किलें आई, ऐसे दौर आए जब चीजें उनके पक्ष में नहीं थी। लेकिन उन्होंने एक बात को महसूस किया, जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी तरह की लड़ाई लड़ रहा होता है। किसी का संघर्ष हमें दिखाई देता है और किसी का नहीं। कोई अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई पढ़ाई में सफलता के लिए, कोई अपने परिवार के लिए, कोई अपने सपने के लिए, और कोई ऐसी मुश्किल से गुजर रहा होता है जिसके बारे में वो किसी को बता भी नहीं पाता। इसी सोच के साथ नेवर गिव अप डे का संदेश सामने आया। लोगों की उन कोशिशों को सम्मान देने का जो शायद दुनिया को दिखाई नहीं देती, लेकिन जिनमें इंसान हर दिन अपनी पूरी हिम्मत लगा रहा होता है। और आज 18 अगस्त को यही दिन प्रिजर्वेरेंस, डिटर्मिनेशन और रिजिलियंस के सामने टिक कर खड़े रहने के संदेश के रूप में मनाया जाता है।

अब आता है कि एक और दिलचस्प सवाल, 18 अगस्त ही क्यों? इस तारीख को नेवर गिव अप डे से जोड़ने वाले सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक नाम है फिलिप क्रोइजोन। फिलिप फ्रांस के एक तैरक है, लेकिन उनकी कहानी किसी आम तैरक की कहानी नहीं है। एक गंभीर विद्युत दुर्घटना के बाद उन्होंने अपने चारों अंग खो दिए थे। सोचिए दोस्तों, जिस व्यक्ति के सामने रोजमर्रा की जिंदगी ही एक बड़ी चुनौती बन चुकी हो, वो स्विमिंग के बारे में कैसे सोच सकता है। लेकिन फिलिप ने हार नहीं मानी। उन्होंने तैरना सीखा, ट्रेनिंग की और प्रोस्थेटिक इक्विपमेंट्स की मदद से अपनी शारीरिक सीमाओं को पार करने का फैसला किया। फिर 2012 में उन्होंने एक ऐसा चैलेंज पूरा किया जो सुनने में भी असंभव लगता है। उन्होंने 5 महाद्वीपों को 4 अलग स्ट्रेट्स के माध्यम से तैरकर जोड़ने का अभियान पूरा किया। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने चारों अंग खो दिए थे, उसी व्यक्ति ने समुद्र में तैरकर दुनिया को दिखा दिया कि शरीर की सीमा और इंसान की हौसले की सीमा एक ही चीज नहीं होती। इसी अचीवमेंट की तारीख को नेवर गिव अप डे की कहानी से जोड़ा जाता है। और दोस्तों, फिलिप क्रोइजोन की कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये नहीं है कि उन्होंने कितना बड़ा रिकॉर्ड बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी परिस्थिति को अपना अंतिम फैसला नहीं बनने दिया।

दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कभी हार मत मानो, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि चाहे कुछ भी हो बस एक ही रास्ता पर चलते रहो? नहीं, कभी कभी हमें रुकना पड़ता है, अपनी गलती को समझना पड़ता है, अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है, कभी अपना तरीका बदलना पड़ता है और कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता भी बदलना पड़ता है। लेकिन रास्ता बदलना और सपना छोड़ देना दोनों अलग बातें हैं। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो दूसरा तरीका आजमाइए। अगर एक बार असफलता मिली तो देखिए कि उस असफलता ने आपको क्या सिखाया। अगर किसी परीक्षा में मनचाहा परिणाम नहीं मिला तो

अगले प्रयास के लिए अपने तैयारी को और बेहतर कीजिए। अगर किसी सपने तक पहुंचने में समय लग रहा है तो अपनी रफ्तार को किसी दूसरे व्यक्ति की रफ्तार से मत नापिए, क्योंकि हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। दोस्तों, एक बीज को जमीन में बोया जाता है। कुछ ही दिन बाहर से देखिए तो लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जमीन के अंदर जड़ बन रही होती है और फिर एक दिन वही बीज जमीन को छीर कर बाहर आता है। हमारी मेहनत भी कुछ ऐसे ही होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हो सकता है उस समय भी कुछ बदल रहा हो, बस हमें वो दिख नहीं रहा। इसीलिए अगर आज आप अपनी जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको लग रहा है कि सब कुछ रुक गया, तो शायद आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, थोड़ा वक्त और एक और कोशिश। और शायद इसी वजह से 18 अगस्त हमें बार बार एक ही बात याद दिलाता है, हार जाना और हार मान लेना एक ही बात नहीं है, गिर जाना और उठने से इनकार कर देना एक ही बात नहीं है, थक जाना और सफर छोड़ देना एक ही बात नहीं है। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपने अपनी जिंदगी में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा कोशिश की है? इसी साथ कार्यक्रम हेलो ईटानगर यहीं पर समाप्त करती हूँ। दोस्तों, ये आकाशवाणी ईटानगर करुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार 3 स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने यह सवाल उठाया था कि बिना

0: अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। अमेरिका के विशेष दूत जेयर्ड कुशनर ने कहा है कि प्रस्तावित गाजा संघर्ष विराम परियोजना पर इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ लगभग 4 घंटे चली बैठक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री कुशनर ने कहा कि बातचीत मुख्य रूप से गाजा के पुनर्निर्माण, असैन्यकरण और इसराइल की सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि श्री नेतन्याहू और उनकी टीम द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। केरलम में विजिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री बीडी सतीशन आज सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। मछुआरों को आज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को सदैव आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे और अपने आदर्शों पर दृढ़ रहे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Jharkhand government has cancelled JSSC CGL examination after 24-day students protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by private agency TDPL. The announcement triggered celebrations at the protest site in Ranchi, though the demand for a CBI probe remains unresolved. The Jharkhand government has decided to cancel the JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency, besides announcing a probe into recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. The decision was taken at a special cabinet meeting chaired by Chief Minister Hemant Soren and was welcomed by protesting students at Jaipal Singh Munda Stadium, who celebrated by distributing sweets and applying gulal. Meanwhile, Minister Deepika Pandey Singh and Health Minister Irfan Ansari, along with the MLA Jai Ram Kumar, visited Sadar Hospital and ended the hunger strike of Devendranath Mahato and other protesting students by offering them juice. Mahato thanked the government and said the decision addressed major demands with the JPSC-JSSC Nyay Manch, announcing that it was suspending its agitation for now. U.S. President Donald Trump has praised India's voter ID card system and hailed it as a model for stricter U.S. election rules. He cited India's electoral system as an example of election security while renewing his call for stricter voter identification requirements in the United States. In a social media post, Mr. Trump referred to a recent conversation with India's Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar. He said Mr. Kumar had questioned how elections could be held in the United States without a mandatory valid photo identity document. Mr. Trump used the remarks to reiterate his demand that the U.S. Congress pass the Safeguard American Voter Eligibility, Save America Act. The proposed legislation seeks to introduce stricter requirements for voting in federal elections. India will host the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today, Environment, Forest and Climate Change Ministry said. The meeting will provide a platform to engage in substantive discussions, foster consensus and strengthen environmental cooperation. The BRICS Environment Ministers meeting will be presided over by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav. The event will be held under the overarching theme of India's BRICS Chairship 2026, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार की आकाशवाणी इटानगर का रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। और अब वक्त हो चुका है पूरे दिन को फुल ऑन एंटरटेनमेंट मसाला और ग्लैमर से भरने का। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चटपटे शो में, जी हां फिल्मी गपशप। अगर आप सिनेफाइल हैं और फिल्म इंडस्ट्री की हर एक हलचल पर आपकी नजर रहती है, तो अगला पूरे कुछ मिनटों बिल्कुल रेडियो से चिपक कर बैठिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे बॉक्स ऑफिस के ताजा धमाकों की, बड़े स्टार्स की अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स की, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आई नई फिल्म्स और वेब शोज की, और साथ ही बॉलीवुड की ताजा ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज और सेलेब्स अपडेट्स की। और इस जबरदस्त फिल्मी सफर में हमारे साथ होंगे कुछ ब्लॉकबस्टर गाने, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सुपरहिट गाने के साथ।

दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिनेमास की ताजा हलचल की। इस अगस्त वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त बॉक्स ऑफिस फेस ऑफ देखने को मिल रहा है। इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड सीक्वल आवारापन 2 और सनी देओल की पीरियड एक्शन ड्रामा बटवारा 1947 आमने सामने हैं। ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार आवारापन 2 ने ओपनिंग वीकेंड पर जबरदस्त पकड़ बनाई है और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 70 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा पार कर लिया है। इमरान हाशमी का इंटेंस अवतार और फिल्म के सोल स्टरिंग गाने ऑडियंस को वापस 2000s के गोल्डन एरा की याद दिला रहे हैं। प्रोड्यूसर ने रिवील किया कि शुरुआत में बायर्स स्केप्टिकल थे, पर अब थिएटर्स हाउसफुल चल रहे हैं और इमरान ने तो आवारापन 3 की भी हिंट्स ड्रॉप कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ सनी देओल की बटवारा 1947 सिंगल स्क्रीन पर स्टेडी कलेक्शन कर रही है। आइए सुनते हैं बॉक्स ऑफिस के इस जोश के बाद एक शानदार मेलोडी।

हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

दोस्तों ओटीटी पर सस्पेंस लवर्स के लिए एक और सॉलिड रिलीज आई है लायंस गेट प्ले पर आखिरी सवाल। इस फिल्म में संजय दत्त और नमाश्री चक्रवर्ती स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। कहानी एक वेटरन प्रोफेसर जिसे प्ले कर रहे हैं संजय दत्त और उनके रेबेलियस रिसर्च स्टूडेंट के बीच की हाई स्टेक्स आइडियोलॉजिकल और टेलीवाइज क्लैश पर बेस्ड है। संजय दत्त का इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस और डायरेक्ट डायलॉग डिलीवरी क्रिटिक्स के बीच काफी तारीफ बटोर रही है। वेब स्पेस में ग्रुपिंग नैरेटिव और ग्राउंडेड स्पिरिट्स की डिमांड जिस तरह बढ़ रही है ये प्रोजेक्ट उसका परफेक्ट एग्जांपल है। आइए ले चलते हैं आपको अगले म्यूजिकल ट्रैक की तरफ।

हो रहा है। स्ट्रीमिंग स्पेस में दो बड़ी फिल्म्स ने एंट्री ली है। पहला है कॉकटेल 2, शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सनन स्टारर रोम कॉम डायरेक्ट डिजिटल रिलीज पर आई है। कहानी सिसिलिया के बैकड्रॉप पर सेट है, जहां मॉडर्न रिलेशनशिप, फर्टिलिटी टेस्ट और अनएक्सपेक्टेड लव ट्राइंगल्स की एक फ्रेश कॉमिक राइड देखने को मिलती है। ट्राई हु केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सीरियस ड्रामा पसंद करने वालों के लिए कंगना रनौत की मेडिकल एक्शन ट्रेलर रिलीज हुई है। ये कहानी 26/11 टेरर अटैक के दौरान कामा हॉस्पिटल के उन करीजियस डॉक्टर्स और मेडिकल फ्रंटलाइन वर्कर्स पर फोकस है, जिन्होंने दुश्मनों के बीच हजारों मरीजों की जान बचाई। इन दोनों रिलीजेस को वीकेंड वॉचलिस्ट में जरूर ऐड कीजिएगा। अब वक्त है हमारे अगले गाने का।

दोस्तों अब आते हैं बॉलीवुड के पावर हाउस रणवीर सिंह पर। रणवीर सिंह ने मुंबई में ऑफिशियली अपनी ग्रैंड स्केल पोस्ट एपोकलिप्टिक थ्रिलर प्रलय की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म में उनके साथ साउथ सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन लीड पेयर में नजर आने वाली है। फिल्म का सेटअप एक डिस्टोपियन फ्यूचर पर बेस्ड है, जिसमें हाई ऑक्टेन प्रैक्टिकल स्टंट्स और हैवी वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडस्ट्री इंसाइडर्स के मुताबिक रणवीर ने इस कैरेक्टर के लिए एक एक्सट्रीम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। सेट से आई फोटोज सोशल मीडिया पर पहले ही वायरल हो चुके हैं। चलिए ग्रुप करते हैं रणवीर सिंह के नाम।

वेलकम बैक टू फिल्मी गपशप दोस्तों। फिल्मों के अलावा इस हफ्ते बॉलीवुड में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर काफी बहस छिड़ गई है। सनी देओल ने कहा कि एक रिसेंट प्रेस में मीट में साफ तौर पर कहा कि चाहे कितना भी बड़ा ऑफर क्यों न मिले, उनका जमीर उन्हें पान मसाला या हार्मफुल सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करने की इजाजत नहीं देता। उनका ये स्टेटमेंट ऐसा वक्त पर आया है जब दूसरे टॉप ए लिस्टर एक्ट्रेस पर सरोगेट ब्रांड एंडोर्समेंट को लेकर पब्लिक और रेगुलरिटी बॉडीज का ध्यान गया है। फैन सोशल मीडिया पर सनी देओल के इस फर्म स्टैंड की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। चलिए माहौल को हल्का बनाते हैं और सुनते हैं एक और बॉलीवुड सॉन्ग।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

दोस्तों आप सुन रहे हैं फिल्म गपशप। सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल और पर्सनल माइलस्टोन की बात करें तो नवाब सैफ अली खान ने अपना हाल ही में 56 बर्थडे सेलिब्रेट किया है। करीना कपूर खान ने उनके स्टाइलिश वेकेशन क्लिक शेयर करते हुए सैफ को अपना फॉरएवर राइड और टाई बताया है। साथ ही बॉलीवुड के कॉरिडोर्स में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की फैमिली लाइफ और अपकमिंग पब्लिक अपीयरेंसेस को लेकर भी फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है। फैंस सोशल मीडिया पर स्टार्स के कैंडिड मोमेंट्स और बीटीएस स्नैपशॉट को खूब शेयर कर रहे हैं और अब नजर डालते हैं उन मेगा प्रोजेक्ट्स पर जो आने वाले हफ्तों में थिएटर और स्क्रीन पर धूम मचाने वाले हैं। दोस्तों रॉकिंग स्टार यश की मेगा पैन इंडिया फिल्म टॉक्सिक अगस्त के आखिरी हफ्ते में आने को तैयार है। इसमें कियारा आडवाणी और नयनतारा के साथ यश का रो स्टाइलिस्ट लुक पहले से ही इंटरनेट पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज ले रहा है। कल कॉमेडी फ्रेंचाइज खोसला का घोसला 2 अनुपम खेर, रणवीर शौर्य और रवि किशन के साथ लेट अगस्त में रिलीज हो रही है, जिसका ट्रेलर फैंस को नॉस्टैल्जिक वाइब दे रहा है और सितंबर के पहले हफ्ते के लिए तैयार हो गए बड़े पर्दे पर कालीन बायू और गुड्डू पंडित के थिएट्रिकल शोराउंड के लिए। एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला आने वाले दिनों में और भी एक्सप्लोसिव होने वाला है। तो चलिए सुनते हैं आज का ये आखिरी सुपरहिट गाना। सारेगामा कारवा।

0: दोस्तों उम्मीद है आज का ये सफर स्टार स्टडेड सफर बॉक्स ऑफिस क्लैश से लेकर ओटीटी रिकमेंडेशन और सेलेब अपडेट्स तक आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे इसी शो पे इसी टाइम पे या आकाशवाणी चैनल का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज से। अभी आप सुन पाएंगे दिल्ली से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान पत्र प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। अमेरिका के विशेष दूत जेयर्ड कुशनर ने कहा है कि प्रस्तावित गजा संघर्ष विराम योजना पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ लगभग 4 घंटे चली बैठक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री कुशनर ने कहा कि बातचीत मुख्य रूप से गजा के पुनर्निर्माण, असैन्यकरण और इसराइल की सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित रही। उन्होंने ये भी बताया कि श्री नेतन्याहू और उनकी टीम द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। केरला में विंझिंजम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता ना करे और अपने आदर्शों पर दृढ़ रहे। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी।

0: वेलकम बैक दोस्तों, दिल्ली से समाचार बुलेटिन यही पूरा होता है। दोपहर के इस आखिरी पहर में वक्त हो चला है हमारे इस ट्रांसमिशन के आखिरी और सबसे खास सिलसिले का, रेडियो ऑन डिमांड। हवाओं के जरिए दूर दराज के शहरों, ख्वाहिशों और दिलों को आपस में जोड़ने का नाम ही तो रेडियो है। आपके मैसेजेस और उनके साथ जुड़ी आपकी पसंद, हर एक गीत किसी न किसी की याद और एहसास को बयान करता है। तो आइए सफर को शुरू करते हैं, सीधे आसाम के बोखाखाट से आई एक जबरदस्त फरमाइश के साथ। दोस्तों, पहली फरमाइश आई है बोखाखाट आसाम से हमारे श्रोता ओरकी गोस्वामी की तरफ से। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है एकदम दमदार ट्रैक फिल्म धुरंधर का एनर्जेटिक टाइटल सॉन्ग। ओरकी, आपका गीत हाजिर है, सो एंजॉय कीजिएगा।
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this. Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

दोस्तों, बोकाघत के बाद अब मुड़ते हैं गोलाघाट असम की तरफ, जहां से रोमेश, रुनू और लकी ने मिलकर एक बेहद खूबसूरत 2000 का मेलोडी ट्रैक चूज किया है। उन्होंने ये गीत अपने सभी जिगरी दोस्तों के नाम डेडिकेट किया है। फिल्म कुरुक्षेत्र से कुमार सानू और अलका याग्निक की मीठी आवाज में आपका आना दिल धड़काना।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दोस्तों, दोस्ती की इस खूबसूरत एहसास के बाद अब हम चलते हैं सरिहाजन कार्बी आंगलोंग असम से, जहां से जोगेंद्र रोंगपी जी और उनकी पूरी फैमिली ने हमें याद किया है। रोंगपी परिवार ने अपने सभी दोस्तों को याद करते हुए फरमाइश की है बहती हवा जैसा सुकून देने वाला गीत पुरवैया। तो सरिहाजन के हमारे सभी श्रोताओं के लिए ये गीत हाजिर है।

हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स OTT ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि

0: रही है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। अब रुक करते हैं गोपुर देमालू असम का। हमारी रेगुलर लिसनर सुचिता बसुमतारी ने 90s के गोल्डन वॉल्ट से एक बेहद इमोशनल ट्रैक सेलेक्ट किया है। फिल्म त्यागी का ये गीत उन लोगों के दिल के बेहद करीब है जो पुराने संगीत की गहराई को समझते हैं। सुचिता जी की पसंद पर पेश है तन्हा दिल घबराता है।

दोस्तों, और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये मैसेज आया है हेलम असम से। जी हाँ, ये हमारे 13 लिसनर है, इनका नाम है ज्योति सुरी। ज्योति ने एक ऐसी गजल की गुजारिश की है जो हर दौर में इंसानी जज्बात का आईना रहा है। लेजेंडरी जगजीत सिंह की वो जादुई आवाज और कैफी अजमी साहब के लिखे लफ्ज ज्योति के लिए और आप सभी श्रोताओं के दिल को सुकून देने के लिए पेश है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो।

0: dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0-liter dual-jet, dual-vivity engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों अगली रिक्वेस्ट ब्रह्मपुत्र के खूबसूरत रिवर आइलैंड माजुली असम की तरफ से आया है। माजुली से हमारे साथी देवशीष हजारिका ने याद किया है 90s का एक ऑल टाइम फेवरेट रोमांटिक ड्यूएट। इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की फिल्म इश्क का बेहद प्यारा गीत हमको तुमसे प्यार है।

दोस्तों फरमाइश तो हमारे पास और भी ढेर सारी है, लेकिन वक्त की पाबंदी हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देती। जिन दोस्तों के गाने आज इस ट्रांसमिशन में शामिल नहीं हो पाए, उनसे मैं तहे दिल से माफी चाहती हूँ। आप अपना रिक्वेस्ट फिर से कल दोबारा भेज सकते हैं। इसी के साथ हमारे इस प्रसारण का वक्त यहाँ पूरा होता है। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक पी दोले और तकनीकी अभियंता एचआर ब्रह्मा। दोस्तों कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे मांझ के साथ अरुण एफएम पर। तो अब अपने आरजे याजू को दीजिए इजाजत या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से, और आप सुनते रहिए अरुण एफएम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान पत्र प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत के निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। अमेरिका के विशेष दूत जेयर्ड कुशनर ने कहा है कि प्रस्तावित गाजा संघर्ष विराम योजना पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ लगभग 4 घंटे तक चली बैठक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री कुशनर ने कहा कि बातचीत मुख्य रूप से गाजा के पुनर्निर्माण, असैनीकरण और इसराइल की सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि श्री नेतन्याहू और उनकी टीम द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार थुजार से मुकाबला करेंगी। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई है। एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। मछुआरों को आज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। उधर हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया।
2: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार, आदाब, सलाम और बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत है आप सभी का। दोपहर का वक्त है, दिन अपनी रफ्तार पकड़ चुका है, लेकिन रेडियो के साथ कुछ पल ठहरने का मजा ही कुछ और है। और जब इन सुहाने पलों में साथ हो फिल्म संगीत के अनमोल नगमे, तो दोपहर और भी रंगीन हो जाती है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। मैं हूं आपकी अपनी आरजे मांझ, और आज के इस खूबसूरत सफर में आपके साथ रहने का मौका मिला है मुझे। दोस्तों, रेडियो की दुनिया भी कमाल की दुनिया है। आप हमें देख नहीं रहे, हम आपको देख नहीं रहे, लेकिन आवाजों, गीतों और एहसासों के जरिए जो रिश्ता हम दोनों के बीच बनता है, वो बिल्कुल दिल से दिल तक का रिश्ता है। आप चाहे घर पर आराम फरमा रहे हो, अपने काम में मशरूफ हो, या सफर कर रहे हो, या बस खिड़की के पास बैठकर दोपहर को महसूस कर रहे हो, अरुण FM है आज आपके साथ। और इस पूरी ट्रांसमिशन को बेहतरीन अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे प्रसारण निष्पादक गोपाल राय, और रेडियो की आवाज को आपके रेडियो के सेट तक बिल्कुल साफ, खूबसूरत और लगातार पहुंचाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं हमारे तकनीकी अभियंता नंद कुमार। और सबसे खास हमारे प्यारे श्रोताओं, आप सबको दिल से सलाम और इस दोपहर की ढेरों शुभकामनाएं। आपकी मुस्कुराहट बनी रहे, आपका दिन खुशियों से भरा रहे, और आज की ये दोपहर आपके लिए यादों और संगीत से भरपूर रहे। तो दोस्तों, जरा वॉल्यूम ठीक कीजिए, अपने काम के बीच एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लीजिए, और दिल को तैयार कीजिए उन गीतों के लिए जो कभी हमें पहली मोहब्बत याद दिलाते हैं। कभी दोस्तों की महफिल, कभी कोई पुरानी फिल्म, और कभी बस यूं ही बिना किसी वजह के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। दोस्तों, फिल्मी लहर कार्यक्रम है, और फिल्मी लहर में हर गीत के साथ एक कहानी है, हर धुन के साथ एक एहसास है, और हर एहसास के साथ जुड़ी है आपकी कोई ना कोई खूबसूरत यादें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये फिल्मी लहर का कार्यक्रम इस गीत के साथ। गीत है अच्छा लगता है फिल्म आरक्षण से, जिसे गाया है मोहित चौहान, श्रेया घोषाल और न्यूमान ने। इस संगीत के निर्देशक है शंकर एहसान लोई। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, जब हम बात करते हैं रोमांस की तो हम फिल्म दिल का रिश्ता को बिल्कुल नहीं भूल सकते। 2000 के दशक के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड रोमांटिक फिल्मों में से एक था, और इस फिल्म का गीत भी वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक गीतों में से एक माना जाता है। चलिए अब सुनते हैं फिल्म दिल का रिश्ता से, दिल का रिश्ता जिसे गाया है अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की। दोस्तों, इस फिल्म में का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ आज। ये फिल्म दिल का रिश्ता, जिसमें है हमारी बहुत ही खूबसूरत ऐश्वर्या राय, इस फिल्म के निर्देशक यानी प्रोड्यूसर खुद उनके भाई आदित्य राय थे। वहीं पे इस फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर के पीछे भी ऐश्वर्या राय की माँ, जी हाँ, ऐश्वर्या राय की माँ ने खुद इस फिल्म को लिखा, उनकी बेटी ने परफॉर्म किया और उनके बेटे यानी आदित्य राय ने इस फिल्म को निर्देश किया। है ना बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी बस। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सुनते हैं फिल्म दिल का रिश्ता का ये टाइटल ट्रैक, दिल का रिश्ता।

0: और इसी के साथ दोस्तों फिल्मी लहर की ये सुरीली लहर अब धीरे धीरे अपने किनारे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन संगीत का सफर यही रुकने वाला नहीं है। अब वक्त है सुरों का रंग बदलने का, थोड़ा सा वेस्टर्न टच, थोड़ी सी इंटरनेशनल खुशबू और कुछ ऐसी मधुर धुनें जो भाषा की सीमाओं से परे जाकर सीधा दिल से जुड़ती है। दोस्तों वक्त है वेस्टर्न मेलोडीज के कार्यक्रम का, चलिए शुरू करते हैं।
1: Hello guys and welcome to the Western Music Program only on Akashvani Itanagar. I'm Sam, your host for the day. Today's playlist takes us through the many shades of love and healing. We begin with Rihanna, an artist who knows exactly how to blend confidence with vulnerability. Needed Me is about recognizing your worth and walking away from something that no longer serves you. Sometimes the strongest thing we can do is realize we deserve better. Needed Me by Rihanna.

0: that is all for today, listeners. I hope you all enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashvani Itanagar. This was your host Sam, signing off for the day. Goodbye.
1: Har zile ki apni kahani.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। बारहवां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर

0: चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना उत्कृष्ट निर्णय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैला कर राजनीति करना सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकर अप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। रियासी के सदिनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। सभी इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज शाम लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार थुजार के साथ मुकाबला करेंगी। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टन लाई से हार का सामना करना पड़ा। इस बीच एक अन्य मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तुर्की के एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्तास से खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज करीब आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 अंक गिरकर 77,362 पर और निफ्टी 87 अंक की गिरावट के साथ 24,201 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The 12th BRICS Environment Ministers meeting is underway at Bharat Mandapam in New Delhi. The meeting serves as a platform for ministers, senior officers, policymakers and experts from the member countries to engage in substantive discussions, foster consensus and strengthen environmental cooperation. Union Minister

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां बात होती है दिल से दिल तक।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज़। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: दोपहर के इस खूबसूरत घड़ी में हम लेकर आए हैं आपके लिए नॉन स्टॉप गजल, एक ऐसे संगीत में महफिल जहां एक के बाद एक गजल आपके दिल की तार छेड़ेगी। कभी मोहब्बत की बात होगी, कभी जुदाई का एहसास, कभी यादों की खुशबू और कभी जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया अंदाज। गजल की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है, लफ्ज कम होते हैं लेकिन उनमें छुपे एहसास बहुत गहरे। एक शेर कभी दिल की बात कह देता है जो शायद हम खुद अल्फाजों में कह नहीं पाते। तो दोस्तों, अगर आपके हाथ में चाय का प्याला है तो उसे जरा संभाल कर रखिए। अगर आप सफर में हैं तो सफर को थोड़ा और सुहाना होने दीजिए, और अगर आप किसी पुरानी याद में खोए हुए हैं तो आज की ये गजलें उस याद को और भी रंगीन कर देंगी। अब ना कोई गुफ्तगू होगी, ना कोई लंबी रुकावट, बस सुर, साज, अल्फाज और गजल, एक के बाद एक नॉन स्टॉप। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं।

0: दोस्तों, आज के हमारे गजल के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं आज का मेहमान। दोस्तों, आज के मेहमान में हमारे साथ है श्री सांगी छिरिंग जी, जो कि है एक एंटरप्रेन्योर, और उनके साथ है हमारे आकाशवाणी ईटानगर के इंटरव्यूअर गोपाल राय। तो चलिए सुनते हैं उनका एक बहुत ही प्रेरणादायक इंटरव्यू। आशा करते हैं दोस्तों कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप प्रेरणा ले पाएंगे, आप जोश ले पाएंगे। दोस्तों,
1: ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 में

0: अच्छे प्रस्तुत है वीकली इंफोटेनमेंट कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हमारे मेहमान है अवार्ड विनिंग यंग एंड डायनामिक एंटरप्रेन्योर फ्रॉम बोमडिला वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट श्री सांगे सिरिंग। सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: अरुणाचल प्रदेश की ही नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वेल नोन एंटरप्रेन्योर है, जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई।
1: वेल, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में, मैंने जो मेरा कंपनी हॉलीडे स्काउट 2011 में शुरू किया था, जब मैं सेकेंड ईयर में था दिल्ली में। हॉलीडे स्काउट इज अ टूरिज्म इंडस्ट्री एंड इट्स अ ट्रेवल कंपनी। लेकिन मैंने टूरिज्म, जब मैं क्लास 10 में था, तभी मैंने समझ लिया था कि टूरिज्म ही मेरे को करना है, क्योंकि मेरा जो अंकल है, आई मीन हिस्से में छिंग होंगे, उनका भी ट्रेवल कंपनी का नाम है हिमालयन हॉलीडेज। तो क्या होता था कि लाइक बैक व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड, तब हमारे घर में काफी सारा जो यूरोपियन हो गया या फिर अमेरिकन गेस्ट है, वो हमारे घर में आते थे टू हैव डिनर लंच एंड ऑल। तभी मतलब उनको देख के एक दिल में एक ख्वाहिश हुआ कि ये जो कर रहे मेरे को भी यही करना है। तो उसी के चलते फिर मैंने आस्ते आस्ते मेरे अंकल को बोला कि मुझे भी सिखाओ कि आप क्या कर रहे हो। तो क्लास 10 का जो वेकेशन है, वहीं से मेरा जो ये टूरिज्म का जो सिलसिला है ये वो शुरू हुआ था। और फिर आस्ते आस्ते जब दिल्ली गया तो सभी को पता है कि दिल्ली में आई मीन लाइफ इज क्वाइट इन पीस। तो उसी टाइम में मुझे कुछ करना था और मेरे को सिर्फ टूरिज्म ही आता था। तो 2011 में मैंने अपना ये हॉलीडे स्काउट जो कंपनी है ये फेसबुक में एक पेज बनाया स्टार्टिंग इनिशियली, और वहीं से शुरुआत हुआ। तो क्या था कि 2011 में एंटायर नॉर्थ से कोई किसी का भी मतलब आपका फेसबुक में अपीयरेंस नहीं था, मतलब वो प्रेजेंट नहीं था, उनका पेज हो गया या फिर जो भी हो गया, आजकल तो काफी सारे हैं। तो हमारा जो कंपनी था वो इनिशियली मतलब फर्स्ट ऐसा कंपनी होगा जो फेसबुक में आया। तो आस्ते मतलब लोगों ने देखा, फिर वहीं से ही लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया और वहीं से ही हमारा जो ये टेक ऑफ शुरू हो गया।
0: अब बात करते हैं आपकी बचपन कहाँ बीती और कैसी रही।
1: मैंने क्लास 3, वैसे तो मैं बोमडिला का हूँ, क्लास 3 तक मैं बोमडिला में था। उसके बाद में फिर क्लास 4 से लेके 8 तक मैं दिराम में हॉस्टल में था, सेंट लोपन इंग्लिश स्कूल पे। उसके बाद फिर मैं 9, 10, 11 बोमडिला में था, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल पे। फिर क्लास 12 जो है मैंने तेजू में किया, लोहित डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके बाद फिर वहां से फॉर हायर एजुकेशन मैं दिल्ली गया, DU में अपना ग्रेजुएशन किया। फिर वहीं से ही ये टूरिज्म जो PG है वो मैंने YMCA से किया।
0: हम बात करेंगे फिर से हॉलीडे स्काउट की, ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है।
1: हॉलीडे स्काउट जो है ये हमारा ये ट्रेवल कंपनी है, हम लोग ज्यादातर जो टूर पैकेजेस है टूर पैकेजेस में ही डील करते हैं। अभी जैसे इनबाउंड हो गया, इनबाउंड का मतलब होता है जैसे बाहर देश जो लोग आते हैं इंडिया में उनको घुमाना। तो लेकिन हमारा जो USP है, जो हम स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट पे ही करते हैं, ओनली इन सेवन सिस्टर्स, मैं सिक्किम भी नहीं करता, ओनली इन सेवन सिस्टर्स प्लस हम लद्दाख करते हैं। लद्दाख क्यों, क्योंकि जून जुलाई अगस्त में हमारा यहाँ पे ऑफ सीजन होता है ड्यू टू रेन, और लद्दाख में तभी मतलब सीजन होता है जून जुलाई अगस्त के महीने पे। तो इसलिए मतलब और डोमेस्टिक पे जो जैसे कि आप मान लीजिए गुजरात हो या मुंबई दिल्ली, तो वैसे को हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया और लद्दाख में हम कैटर करते हैं जी टूर पैकेजेस देके।
0: जानना चाहेंगे जब सबसे पहले जब आपको क्लाइंट मिला था कौन थे, याद है कुछ।
1: हाँ जी, फर्स्ट गेस्ट तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, इट वॉज 48 डेज टूर, वो जो था लंबा था तवांग सर्किट, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट गेस्ट था। और मैंने आपको जैसे बोला कि मैंने जो है हॉलीडे स्काउट एक फेसबुक पेज से शुरू किया था, तो उसमें क्या हुआ था कि एक भूटान का एक कंपनी है, उन्होंने मेरा पोस्ट देखा और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि 3 कोरियन मंग्स हैं, एक मंक और 2 नन, उनको जो है ये बुद्धिस्ट सर्किट करना है, स्पेशली तवांग बेल्ट जो हमारा बोमडिला दिरांग तवांग है, और प्लस में से फिर ये उनको ये लुम्बिनी जो गोल्डन जो ये बुद्धिस्ट सर्किट बोलते हैं हमारा जो इंडिया का बोध गया हो गया लुम्बिनी सारनाथ ना, वो सब करना था। और उसके बाद में फिर उनको करना था ये लद्दाख ट्रिप। तो 3 जो कोरियन मॉन्क नंस थे वो मेरा फर्स्ट गेस्ट था
0: जी। तो इस फील्ड में आप एकदम नए थे, तो कुछ चैलेंजेस थे, कुछ परेशानियां हुई।
1: अगर आप मुझे चैलेंजेस के बारे में पूछते हैं तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो 15 साल से ही टूरिज्म में था, वैसे क्लास 10 के वेकेशन से था। और जब मुझे अपना जब फर्स्ट गेस्ट मिला तो वो एज ए हॉलीडे स्काउट के लिए वो फर्स्ट गेस्ट था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस जो गाइडिंग का वो तो मेरे पास में पहले से ही था। तो उसमें मुझे मतलब एक्साइटमेंट था कि हॉलीडे स्काउट का फर्स्ट गेस्ट है, पर नर्वसनेस नहीं था उसमें
0: जी। हॉलीडे स्काउट की जब बात करते हैं तो सांगे सिरिंग और हॉलीडे स्काउट के साथ साथ ये भी बहुत पॉपुलर बात है कि आपने स्कूल को पेंट करवाया था, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
1: हाँ जी, इन टर्म्स ऑफ हॉलीडे स्काउट ना, हमारा क्योंकि मैंने ये जो टूरिज्म जो है ग्रास रूट से ही मतलब मैंने देखा है। और क्या था कि स्कूल पेंट को लेके अगर स्पेसिफिकली इसी टॉपिक में बात किया जाए तो मैं जो हूँ, मेरे जो दो गेस्ट हैं कैनेडियन लेडीज थे, मून एंड टीना, मैं उनका नाम अभी भी जानता हूँ क्योंकि दे वर लाइक वेरी इम्पैक्टफुल इन टर्म्स ऑफ जब हम घूमे थे स्कूल में ना, तो हम विलेज वॉक कर रहे थे एंड देन उनमें से एक जो था वो जो है कैनेडा में टीचर थी, तो उन्होंने कहा कि चलो स्कूल जाके देख

0: देखते हैं, तो जस्ट हम विलेज वॉक करते करते छुक में ही, मतलब एक छुक एक विलेज का नाम है, आई मीन ऑलमोस्ट मैक्सिमम 30 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दिरा, तो वहां पे स्कूल में गए, तो स्कूल का जो मतलब जो कंडीशन था वो एकदम खराब था
1: जी
0: और तभी मैंने वहां पे जो हेडमास्टर है, बिकॉज इट्स ए मिडिल स्कूल, तो मैंने उनको बोला कि आपके स्कूल का जो भी है कंडीशन उसको मतलब एज अ हॉलीडे स्काउट विल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड हम स्कूल को रेनोवेट करेंगे। तो उसके बाद में फिर आई मीन और जो मेरा जो गेस्ट था उन्होंने भी कहा कि वी वुड ऑल्सो लाइक टू हेल्प आई मीन हॉलीडे स्काउट इन ये जो स्कूल को ना बनाने में। तो उसके बाद में वो तो चले गए और जब हमारा जब जून जुलाई का सीजन था तो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, तो लकीली आई मीन माय फ्रेंड्स वर आल्सो वेरी सपोर्टिव, 10-12 लोग आए, 8-9 दिन पूरा लगातार वहां पे स्कूल पे बैठे, स्कूल में पूरा पेंट किया, जो स्कूल का जो सीलिंग है वो ठीक कराया बच्चों के बीच में, क्योंकि जब हम रेनोवेशन कर रहे थे तो बच्चों के बीच में मतलब जो उनका जो पढ़ाई का जो सेशन था वो भी थोड़ा सा बिगड़ रहा था, तो हमने उनको भी मतलब टूरिज्म के बारे में सिखाया, पेंटिंग कॉम्पिटिशन रखा, जीके कॉम्पिटिशन रखा, स्पोर्ट्स का सेशन, मतलब उनको भी अच्छा एक स्पोर्ट्स वीक तरफ में लेके गए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया। और जो सारा का सारा जो स्कूल है, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैंने 100% ऑफ स्कूल को ठीक कराया, लेकिन 85% स्कूल जो था वॉल से लेके आपका सीलिंग से पेंट विंडोज वो सब कुछ हमने ठीक कराया वहाँ पे।
1: जब ये काम कंप्लीट हो चुका है एग्जीक्यूट होने के बाद, ये जानना चाहिए जो बच्चों में पर्टिकुलरली बच्चों में उनके जो एक्सप्रेशन थे बहुत खुश होंगे, किस तरह के थे?
0: हाँ जी आई मीन देखिए पहला जो था स्कूल का हालात वो था टूटा फूटा सा। उसके बाद में जब हमने जब ठीक कराया तो फिर हमने वॉल में आपका मिकी माउस से लेके गुफी से लेके जो भी जो कार्टून होता है उन सबका मैंने पेंटिंग कराया। तो फिर क्या हुआ कि ये जो इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी टू द डॉग ना, मैं ये बोलना चाहूंगा कि उसके बाद भी मैं गया गेस्ट लोगों को लेके, और तो वहां का टीचर जो है उन्होंने मुझे बोला कि आजकल जो है बच्चे, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अभी 15 बच्चे आ रहे हैं, तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोल रहे कि स्कूल अभी इतना मतलब कलरफुल हो गया कि बच्चे खुद मतलब नहीं बोल रहे हैं कि मुझे स्कूल जाना है। पहले था कि कंडीशन ऑपोजिट था कि मुझे स्कूल नहीं जाना, लेकिन अब स्कूल मतलब बन चुका है, कलरफुल है, और हमने मतलब वहाँ पे ये बुक्स से लेकर बहुत कुछ वहाँ पे डोनेट किया है इन टर्म्स ऑफ लाइक फुटबॉल हो गया, क्रिकेट, बैडमिंटन ना, तो वो सबको भी मतलब लेके विद इन द विलेज एक अच्छा अवेयरनेस फैल चुका था कि उनको भी स्कूल जाना ही है बोल के।
1: सांगे एक टूर ऑपरेटर तो है, बहुत प्रसिद्ध टूर ऑपरेटर, साथ ही साथ एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर और खुद एक ट्रैवलर भी है।
0: Well, I mean, I think this add on to the मेरा जो हॉबी है, क्योंकि हम इतना जगह ट्रैवल करते हैं और मेरा फोटोग्राफी में आई यूजली क्लिक विद माई फोन ओनली, क्योंकि इनिशियली जो हमारा जो USP है विद इन ऑल द टूर्स, वैसे तो हम काफी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ टूर्स करते हैं, लेकिन फोटोग्राफी टूर जो है स्पेशली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, उसमें आई थिंक वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हमारा टाइप ये मैनचेस्टर सिटी, यूनाइटेड, टोटनहैम, जो जगह है छोटे छोटे जगह वहाँ का जो ये फोटोग्राफी क्लब्स है उनके साथ में टाइप है, तो कभी 2-4-6 लोग मतलब आ जाते हैं, इटली से भी काफी लोग आते हैं फोटोग्राफर्स। और आपको तो पता है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट में इन टर्म्स ऑफ ट्राइब एंड कल्चर और जो अटायर है, और हमारा यूएसपी एंटायर नॉर्थ ईस्ट, जैसे आप पता नहीं ट्राइब का जो लेडीज है वो आपको मतलब पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, सो इट अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ फोटोग्राफर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो इसलिए मैंने भी उनके साथ में जाके मतलब एक दो इधर उधर मतलब फोटोग्राफी का टेक्निक एंड ट्रिक्स वो सीख के मैं वही करता हूँ
1: जी। एज अ टूर ऑपरेटर जिस तरह से आपने नॉर्थ ईस्ट को हमने मैग्नीफाई किया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को किया, इसके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले, आपके जुबान से जानना चाहेंगे कि एक दो अवार्ड जो आपके लिए बहुत मायने रखता हो।
0: जी टचूर की अभी तक जो भी किया मैंने उसका मतलब काफी मुझे अप्रिसिएशन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर आप इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से। तो 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है हमारा और अरुणाचल का, उन्होंने मुझे बस अवार्ड दिया था बाय द नेम एक्सप्लोरर ऑफ द ईयर 2017 को था वो। उसके बाद मुझे फिर ये जो अमेरिका का जो मैगजीन है काउंटर ट्रेवलर मैगजीन, ये जो है मतलब अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों में मतलब काफी फेमस है, उन्होंने मुझे 50 पीपल टू नो इन द हिमालय में नाम दिया था, विच वॉज अगेन अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज आई मीन कमिंग फ्रॉम सच अ हम्बल बैकग्राउंड, एंड देन ये जो नाम था आई मीन 50 पीपल टू नो इन द हिमालय इट वॉज क्वाइट ह्यूज फॉर मी। और साथ ही साथ मुझे फिर ये जो केयर हिमालय एसोसिएशन है इनका जो ऑफिस है वैसे तो ये हिमाचल में है, लेकिन ये पूरा हिमालयन बेल्ट में ये कहीं ना कहीं प्रोग्राम करते हैं। तो 2019 में मुझे थिम्पू में बुलाया था भूटान में, और वहां में मुझे ये जो भूटान का जो होम मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी अवार्ड दिया था केयर हिमालय का अवार्ड, क्योंकि अंडर हॉलीडे स्काउट हम काफी सारे इनिशिएटिव करते हैं रिस्पॉन्सिबल को लेके, जैसे आपने कहा कि स्कूल को हमने ठीक कराया, तो साथ ही साथ ऐसा मतलब काफी सारा लिस्ट है जो मतलब हम एज अ स्मॉल कंपनी हम चाहते हैं कि हमारे साथ में जो हमारा जो सोसाइटी है वो भी ग्रो करे। और फिर उसके बाद में इन टर्म्स ऑफ अवार्ड हमने फिर ये रिसेंटली जो ईस्ट मोजो जो है जो गुवाहाटी बेस्ड मीडिया फर्म है उन्होंने भी ये उनके तरफ से प्लस ये यंग नॉर्थ ईस्ट हीरो का जो अवार्ड है टूरिज्म सेगमेंट में वो अवार्ड मुझे मिला था फर्स्ट एडिशन का। और उसके बाद में फिर मुझे ये आइकन ऑफ द एशिया का भी अवार्ड मिला है आई मीन यूथ में। फिर अभी तो आई मीन मैं भी भूल गया हूँ ना, अभी एक दो और है पर मुझे याद नहीं आ रहा है,
1: लिस्ट तो मतलब बढ़ता ही जा रहा है।

0: तो
1: जी
0: जैसे आप एक युवा हैं, आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, आपको आप वेल रिकग्नाइज्ड है, लेकिन दुख की बात है कि अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कुछ युवा हैं जो आज नशे की लत से ग्रसित हैं, तो उन्हें इस लत से किस तरह से बाहर निकाला जाए? आप सोचते हैं कि क्या किया जाए ताकि इस लत से दूर रहे?
1: वेल इन टर्म्स ऑफ अभी देखा जाए तो जैसे अभी ड्रग्स हो गया ना, ड्रग्स का जो प्रॉब्लम है ये तो एंटायर आपका फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ हर जगह है, नॉट ओनली इन अरुणाचल लेकिन एंटायर नॉर्थ ईस्ट पे। तो अभी ड्रग्स को लेके क्या है कि अभी मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मतलब जिनको 100% लग चुका है, लेकिन जो यूथ है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे अवेयरनेस दिलाया जाए, तो इसमें मतलब पेरेंट्स का काफी बड़ा रोल होगा। क्योंकि आई मीन अभी हमारा जो ये जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, ऑल दो यहाँ पे मतलब 26 मेजर ट्राइब्स है, और आप मान लीजिए जैसे कि वेस्ट में अभी बुद्धिस्ट हो गया या फिर हिंदू हो गया या फिर क्रिश्चियन हो गया, तो हमें मतलब मुझे लगता है आई मीन काफी सालों को ये चीज नहीं भी लग सकता है, मुझे ये चीज लगता है कि अगर हम अपने रिलीजियसली अगर कनेक्ट हो, प्लस अगर हमारा एम और पेशन जो है वो प्रॉपरली अगर आई मीन यू नो देखा जाए तो आई मीन थ्रू आवर पेरेंट्स, इसको अगर प्रॉपरली नर्चर किया जाए तो मतलब हम मतलब हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनको मतलब ये ड्रग्स से हम दूर रख सकते हैं। ये मतलब
0: जी
1: ये मेरा सोच है कि रिलीजियन जो है मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग एक रोल प्ले करेगा, और प्लस पेरेंट्स बींग पेरेंट्स विल ऑलवेज लुक आफ्टर देयर किड्स।
0: जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, आप वेल रिकग्नाइज है, और इसी तरह आपकी तरह अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स हैं। कुछ कंपटीशन होते हैं कि मुझे बेस्ट करना है, इससे बेहतर करना है, वो तो कुछ इस तरह के कुछ होते हैं?
1: कंपटीशन तो विद इन माई सेल्फ, तो वो तो हमें हर दिन होता है क्या कि मुझे और अच्छा करना है और अच्छा करना है। लेकिन अगर आप देखा जाए जैसे मास में ना, तो अरुणाचल में अगर मेरे जो फील्ड इस पे आप देखा जाए तो मतलब यूथ जो है इतना मतलब उभर के नहीं आ रहा। ऑल तो हाँ अभी जो है इन फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स आफ्टर कोरोना काफी सारे यूथ लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि टूरिज्म एक ऐसा फील्ड है जो भी जो फाउंडर है या फिर जो भी प्रोपराइटर है या फिर जो भी पीपल आई मीन द पर्सन हु वांट्स टू बी इन दिस लाइन, उनको थोड़ा पेशेंस होना पड़ेगा। अभी मान लीजिए जैसे कि बात ये है कि जो मेरा जो सीनियर्स है तो वो लोग ही मुझे बोलते हैं कि फॉर देम जब वो लोग कर रहे थे तो उनका कॉम्पिटिटर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स जब तक मैं नहीं आया तो कोई था नहीं। तो सिमिलरली अभी मैं भी 2011 से हूँ आई मीन इस फील्ड पे, लेकिन मुझे भी नहीं लग रहा है कि मतलब मेरे कॉम्पिटिटर कोई है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आई एम डूइंग द बेस्ट, लेकिन मुझे ये फील होता है अगर आप देखा जाए तो अलग जगह से तो जो मेरे एज है और या फिर जो मेरे से छोटे वो काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन एंटायर अरुणाचल में ना हमारा जो जो मेन जो सोच है प्लस जो पेशेंस चाहिए ना वो जो काफी लेक हो रहा है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि मतलब ओवरनाइट तो नथिंग टर्न्स इन गोल्ड, आपको थोड़ा टाइम देना होगा और धीरे से देना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे ए भी चाहिए बी भी चाहिए सी भी चाहिए ना, अगर आपको ए चाहिए तो आपको पूरा फोकस करके उसी में ही टिकना होगा पूरा।
0: टूरिज्म की बात करते हैं तो आपने इंटरनेशनल टूरिस्ट को हैंडल किया है, डोमेस्टिक टूरिस्ट को हैंडल किया है, क्लाइंट्स की बात करते हैं तो उनकी जो सर्विसेज जो डिमांड होते हैं किस तरह के होते हैं, क्या क्या फर्क होते हैं?
1: अभी जैसे कि मान लीजिए इनबाउंड और ये डोमेस्टिक का बात कर रहे हैं, तो अरुणाचल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको ये पीएपी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट फॉर फॉरनर्स लगता है और आईएलपी लगता है फॉर द डोमेस्टिक गेस्ट। आईएलपी जो है मतलब इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना कि पीएपी है। अभी मान लीजिए जैसे मेरा फार्म का नाम है हॉलीडे स्काउट, अगर मैंने इधर उधर करके मतलब जो पीएपी है पीएपी में मैंने अगर थोड़ा भी माइनस प्लस कर दिया तो मेरा जो फार्म है वो ब्लैकलिस्ट हो सकता है, लेकिन जो डोमेस्टिक के साथ में वो मतलब इतना मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ पीएपी। तो जब इसलिए जब भी हमारा जो इनबाउंड जो गेस्ट होता है जो फॉरनर्स होते हैं ना, तो उनको मतलब हम मतलब बच्चे की तरह देखते हैं उनको, उनको मतलब सुबह 5 बजे से लेके गाड़ी साफ होना चाहिए, मतलब नहीं जो प्रोफेशनलिज्म है उसको मतलब अच्छे से मेंटेन करते हुए एक गाइड हर टूर में देते हैं। अभी काफी सारा होता है आई मीन टूर ऑपरेटर या फिर एजेंसी ऐसा भी है जो मतलब बिना गाइड का भेज देता है। अभी बिना गाइड का तो वो फिर देखेगा लेकिन समझेगा नहीं। और हमारा जो ये जो एरिया है, अब यहाँ पे मानता हूँ कि तवांग हो गया मेचुका आनी नहीं, दिस आर लाइक वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, आपको जहाँ पे देख के आई मीन यू गेट टू नो आई मीन हाउ ब्यूटीफुल द प्लेस इज। लेकिन जो अलग बेल्ट है जैसे मान लीजिए आपका जो जीरो हो गया, आपका वाकरो हो गया ना, जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे तो आपको कोई समझाने के लिए चाहिए, जहाँ जब तक आप जगह के बारे में समझोगे नहीं और प्रॉपरली मतलब ना उनका जो अटायर है फूड हैबिट है ये सब मतलब अच्छा से समझोगे नहीं आप, यू विल नॉट गेट द टोटल आइडिया ऑफ द एरिया ना। तो इसी बात में मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि फॉरनर्स के साथ में हमारा पूरा गाइड होता है, सब कुछ अच्छा से होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि डोमेस्टिक के साथ में हम मतलब लूज छोड़ देते हैं, उनके साथ में भी जो हमारा जो ड्राइवर्स होते हैं, अभी हमारा जो हॉलीडे स्कॉट में जो ड्राइवर्स है दे आर ऑल वेरी प्रोफेशनल, और हमारा तो क्राइटेरिया ये है कि उनका मतलब एक्सपीरियंस मिनिमम 10 ईयर से अबव होना है ड्राइवर्स का भी, क्योंकि वो ड्राइवर कम गाइड का काम कर सकते हैं। और डोमेस्टिक को टू बी वेरी फ्रैंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, डोमेस्टिक को टूर पैकेज चाहिए सस्ता में। मैं एकदम सस्ता वाला तो काम नहीं करता, लेकिन जितना में हो सके जो बेस्ट होगा उससे भी अच्छा और देने का हमेशा प्रयास करता हूँ।
0: तो जैसे अभी आप क्लाइंट से मिलते हैं, टूरिस्ट से मिलते हैं, डिफरेंट प्लेसेस के लोगों से मिलते हैं, तो आपने क्या सीखा उन लोगों से मिलकर, टूरिस्ट से मिलकर, क्लाइंट से मिलकर?
1: वैसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा जिंदगी में ना, क्योंकि छोटा सा ही मैं तो मैं टूरिस्ट के साथ ही घूम घूम के ही मतलब बड़ा हुआ हूँ, तो काफी चीज सीखा है मैंने। अभी स्पेसिफिकली अभी मैं ये तो नहीं बोल सकता कि ये चीज है, लेकिन एज ए ह्यूमन और मतलब एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना, क्योंकि हमारे पास जब भी आते हैं जो हमारा जो जो गेस्ट है, ऑल दो टूरिज्म इज ऑल अबाउट हॉस्पिटैलिटी, काफी सारा गेस्ट हमारा मतलब आई मीन दे आर वेरी हाई एंड गेस्ट, वो इतना पे करके आते हैं, लेकिन बट देन आई मीन दे आर नेचर ऑफ लाइक यू नो टॉकिंग आई मीन रेस्पेक्टिंग नॉट ओनली मी बट देन द नेटिव ऑफ द प्लेस विलेज एंड ऑल, वो सब चीज इतना एक हम्बलनेस जो है वो सब इतना दिल को छू जाता है ना, कि वो मतलब हमेशा फिर अभी दिल में रह चुका है। ऐसा नहीं है कि मतलब यू नो ये हमें रूट होना है नॉल ना, तो जो हॉस्पिटलिटी में ऑब्वियसली हम्बलनेस तो होना है, पर हम्बलनेस के ऊपर में वो पूरा मतलब मल्टीप्लाई से मतलब नहीं कि हमें मार तो से मार के चला जाता है, कि हम और हम्बल मैंने और हम्बल होना सीखा उनसे।
0: जी, तो हम्बलनेस की बात करते हैं तो आपको बहुत सारे मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में आप पब्लिश हो चुके हैं, अपने बारे में पढ़ना कैसा लगता है?
1: ये तो हमेशा एक्साइटमेंट की बात है, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया इसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। ऑल्दो ये मेरा फर्स्ट रेडियो टॉक है, लेकिन हर दिन हम ग्रो कर रहे हैं, हर दिन हम सीख रहे हैं, तो आपके पास बैठ के भी मैं आई एम वेरी मच एक्साइटेड और मैं सीख रहा हूँ आपसे भी बहुत कुछ।
0: जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, सांगे सिरिंग सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव है, बहुत खुश दिखता है, तो आप रियल में बहुत हमेशा खुश रहते हैं?
1: अभी आई मीन रियल में हमेशा खुश, तो अभी लाइफ में तो अप डाउन होता है हर किसी के बारे में, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरा मेरा जो बिजनेस ही और मेरा जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा पैशन ही था, और मैंने फेसबुक से और जो सोशल मीडिया से ही शुरू किया था, तो अभी मैं घूमते रहता हूँ जहाँ था मैंने जहाँ था ऐसे लग गया इसके साथ यहाँ वहाँ, तो कुछ भी होता है इंटरेस्टिंग वो मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो लोग आई मीन जो जो लोग है जो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स है या फिर इंस्टाग्राम फ्रेंड्स है तो देखिए तो खुशी होता है। आई मीन मेरा तो मानना ये है कि मैं खुश इसलिए क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ कि जो मुझे पसंद है।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने। फिर बात करते हैं आपके क्लाइंट्स की, अभी तक सबसे ज्यादा तकलीफ किस क्लाइंट को हैंडल करने में हुई है?
1: एक है कि काफी इंटरेस्टिंग ना कहानी, एक हमारे पास में एक कपल आया था, बोथ ऑफ देम देवर रिटायर्ड पर्सन, इसराइली थे वो एक कपल था, तो जो हमारा जो टूर था वो था 14 डेज का, ये जीरो उसके बाद में ये तवांग बेल्ट का था ईटानगर का, तो मैं गेस्ट था उसमें, सॉरी मैं गाइड था उसमें, आई कांट बी द गेस्ट ना, आई वाज अ गाइड देयर। ये 2015 का बात है, तो मैं उनको घुमा रहा था गुवाहाटी से, हमने पिकअप किया, हम गुवाहाटी से पिकअप करके बालपुंग की तरफ आ रहे थे। फर्स्ट दिन मैंने बहुत बात किया क्योंकि हमारा काम है जगह के बारे में समझाना है, तो फिर बोथ ऑफ देम दे वर लाइक ओके हाँ ठीक है, ओके हाँ ठीक है, तीन वर्ड यही था दिन भर। मैंने सोचा चलो कम बात करते हैं क्योंकि अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग आते हैं ना, तो फिर उसके बाद में चलो डे वन था ये, डे टू मैंने दिखाया हाँ ये भी ठीक है ओके हाँ यस ना, सेम तीन वर्ड था और फोटो खींचा, मतलब फोटो भी ऐसे मतलब आप मान लीजिए वाटरफॉल में गए एक फोटो खींचा, अभी वो कैसा है क्या नहीं है उनको भी नहीं पता, बस उन्होंने बोला चलो मैंने भी चलो ठीक है। थर्ड डे में तो मैंने भी सोचा अभी अभी इनको इंटरेस्ट नहीं था और क्या मैं भी क्या बोलूँ ना, तो मैंने भी कहा गुड मॉर्निंग सर गुड इवनिंग सर, उन्होंने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, उसके बाद में फॉर द रेस्ट 8 to 8 days ना वो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट में चला गया पूरा का पूरा टूर, इट वाज अ साइलेंट ट्रिप।
0: हम ये भी बोल सकते हैं मेमोरेबल रहा।
1: हाँ वो हाँ आई मीन लोग आते हैं ना, आई मीन हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग आते हैं,
0: जी
1: तो ये भी एक हमारा मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। तो जो मेरा जो ड्राइवर है वो हम अभी भी बात करते हैं कि ऐसा ट्रिप हमें कभी मिला नहीं, इट वाज अ क्वाइट आई मीन इट वाज अ साइलेंट टूर।
0: आने वाले दिनों में अरुणाचल प्रदेश का जो टूरिज्म का सीनेरियो होगा कैसा होगा?
1: काफी अच्छा होगा, पास जैसे था उससे तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि अभी हमारा जो टूरिज्म में अभी जो सेक्रेटरी है सेक्रेटरी सर प्लस हमारा जो जो डायरेक्टर टूरिज्म है दामो सर, बोथ ऑफ देम प्लस जो उनका जो स्टाफ है जैसे हमारा डिप्यूटी मन्ना मेरम है, दे आर ऑल वेरी हार्ड वर्किंग इन टर्म्स ऑफ लाइक प्रोमोटिंग टूरिज्म विद इन द विलेजेस, आप मान लीजिए होम स्टे से लेके गाइड से लेके जो टूर ऑपरेटर्स वगैरह सभी को काफी हेल्प करते हैं। और जैसे आपने पूछा कि प्रमोशन के बारे में ना, हमने जो है 2013 से ही जो ट्रेवल राइटर्स होते हैं ब्लॉगर्स होते हैं उनको लेके वो जगह जगह का प्रमोशन तो हमने भी किया है, और फ्यूचर में तो ऑब्वियसली जैसे मतलब जागरूकता बढ़ रहा है और अरुणाचल तो ऑब्वियसली हर किसी को पसंद है और हर किसी का एक ड्रीम डेस्टिनेशन है।
0: लेकिन सच्चाई ये भी कि जब हम अरुणाचल टूरिज्म की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग कुछ प्लेस को ही जानते हैं, टेक एन एग्जाम्पल तवांग बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका?
1: जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि सर ऑल बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस, लोगों को जितना पता होगा और वो जितना मतलब सोशल मीडिया में देखेंगे लोग उतने ही आएंगे। अभी आपका तवांग जीरो हो गया ये तो आपका पूरे नॉर्थ ईस्ट में इट्स अ पाई, हर किसी को खाना है, वो ना डेजर्ट है वो. आई मीन वो तो अभी आप हो ना हो नॉर्थ ईस्ट में गए तो तवांग जीरो ये सब तो करना ही करना है. अरुणाचल में तो आई मीन दिस टू आर द मेन अट्रैक्शन ना. लेकिन अभी अपकमिंग जैसे आपका अनिनी मेचुका ऑलरेडी आपका टूरिज्म मैप में है. अनिनी जो है उनका जो प्रमोशन है और रास्ता भी काफी अच्छा हो चुका है पहले जैसे था. पहले आप रोइंग टू अनिनी हमें लगा था 14 आवर्स, अभी सुनने में आ रहा है कि 9 आवर्स. तो आने वाला दिन में ये जो कनेक्टिविटी है वो और अच्छा होगा. तो ऑब्वियसली
0: आपने कनेक्टिविटी की बात की, आजकल एयर कनेक्टिविटी भी हो गई, तो इससे टूरिस्ट फ्लो किस तरह का होगा?
1: इट विल ऑलवेज एड ऑन, आई मीन एड ऑन एज इन लाइक एड द चार्म टू द प्लेस. जैसे अब जीरो में है, तेजू में अभी रिसेंटली एक और टर्मिनल बनाया.

0: तो तेजू में बना, मतलब वो ऑब्वियसली आपका जो ईस्टर्न बेल्ट पे जो आपका नाम सा ये रोइंग तेजू और जो आनिनी है उसको और प्रमोट करेगा। अभी हमारा ये जो अभी जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, कुछ साल पहले हर किसी का मतलब मैक्सिमम ऑफ द पीपल उनका प्रॉब्लम था कि काफी दूर है। पहले जब ये हमारा जो नाहरलगुन का रेलवे स्टेशन वो नहीं था तो ईटानगर से लोग आके फिर ना आई मीन 14 आवर्स या फिर 15 आवर्स किसी को इतना दूर होता था। पर अभी आप डिब्रूगढ़ से डायरेक्ट ये जो छोटा वाला जो उनका जो प्लेन है ATR या कुछ है फ्लाई बिग का, उससे आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो कनेक्टिविटी ऑलवेज एड्स ऑन टू द चार्म, प्लस इट इंक्रीजेस द टूरिज्म इन द पर्टिकुलर लोकेशन।
1: जी, तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का कितना इंपॉर्टेंस है?
0: रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि अभी हमारा जो अरुणाचल पे ILP और PAP है, तो चलो हमने इन अ वे हमारा जो स्टेट को काफी सारे सारे लोगों को लगेगा कि ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें मास टूरिज्म चाहिए। काफी सारे को लगता है कि ये अच्छा भी है। तो अभी सोचने की बात है कि आपको क्या चाहिए ना, मास टूरिज्म चाहिए कि आपको मतलब जो जैसे चल रहा है वैसे चाहिए। तो बिजनेस में देखा जाए तो आपको मास टूरिज्म से ही आपका मतलब ग्रोथ होगा, लेकिन जब ग्रोथ होगा तो आई मीन साइमल्टेनियसली आपका जगह को भी मतलब पोल्यूशन तो होना ही है। जैसे आप मान लीजिए अभी हिमाचल हो गया, मंडी हो गया है ना, शिमला एंड ऑल, वहाँ पे इतना सारा टूरिज्म है कि टूरिस्ट चाहते हैं कि वहाँ पे मतलब जो उनका जो आई मीन जो ग्रोथ होना चाहिए वो पूरा गंदगी में जा रहा है, प्लास्टिक हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स ना, लीक्स गंदे हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी तक जैसे मान लीजिए आपका ये GRK जो पासर में है वो काफी अच्छा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस और फिर विद इन अवेयरनेस जो लोकल लोकल लोग करा रहे हैं, फैमिली फैला रहे हैं, ये नॉट ओनली इन टूरिज्म बट इन सफाई के मामले में, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में। तो हमारा जो ये जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो भी काफी लोग कर रहे हैं, लेकिन यूथ लोगों को अभी इतना पता नहीं है। तो इसमें मतलब और अभी जैसे हमने मैंने आपको कहा कि जो हमारा जो ग्रुप है आप तो वो उस पर और ज्वाइन करके, अगर हमारा जो हमारा जो कॉन्फ्रेंस होता है उस पर आके बात करके मतलब नहीं इसको कैसे करके और नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड लेके जाए रिस्पॉन्सिबल में, तो उसमें मतलब वो सभी अच्छा होगा।
1: लास्ट ईयर 2022 तक तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग का जो टूरिस्ट सर्किट था वो नहीं खुला था, अब वो खुल गया, तो इससे ईस्टर्न अरुणाचल के जो टूरिज्म को किस तरह से बूस्ट मिलेगा?
0: इससे तो आपको आई मीन ईस्टर्न अरुणाचल पहले बंद था, लेकिन जब बंद था फिर भी उस टाइम में जो हमारा जो फॉरेनर्स को लेके जो परमिट था, अदर जो पार्ट में PAP लगता था और वहाँ पे जो है RAP लगता था, लेकिन अभी भी अभी लेकिन वहाँ पे PAP से ही हम जा सकते हैं। लेकिन अभी आपने जैसे कहा कि वहाँ पे टूरिज्म से कैसे उनको बूस्ट मिलेगा ना, तो तिराप चांगला में जो ट्राइब है और जो कल्चर है उनका वो काफी रिच है। ऑल दो हाँ मैं मानता हूँ कि आई मीन दे आर वेरी मच सिमिलर नागा पीपल इन ऑल, लेकिन नागालैंड में क्या है कि आई मीन टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड देन द ओरिजिनल जो है वहाँ पे जो रियलिटी है, नागा पीपल दे हैव कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, तो उनका जो मेन जो ग्रास रूट जो है जो उनका जो जड़ है ना जो USP है वो मिसिंग है। वो एक दो जगह में ही आप देख सकते हो, जैसे कि नॉर्थ नागालैंड में हो गया जो मौन एरिया हो गया जहाँ पे हेट हंटर है, तो वो भी इन कमिंग ईयर्स वो भी नहीं रहेंगे, बिकॉज ऑल द पीपल मैन दे आर ऑल 80-75+ एंड ऑल। लेकिन अगर आप हमारे पार्ट पे देखते हो TLC बेल्ट पे, तो ये जो चाम है वहाँ पे अभी भी है, जो उनका जो ये वांगचो नोक्ते ये ना उनका जो तांगसा जो ट्राइब है उनका जो ऑथेंटिक विलेजेस है वो अभी भी बरकरार है, उनका जो फेस्टिवल्स है वो अभी भी वो लोग पूरा धूमधाम से मनाते हैं। तो इसको मतलब एक प्रॉपर चैनलाइज करके मार्केटिंग करके अगर डिपार्टमेंट हो गया या फिर अलग जैसे मेरा जैसे अलग टूर ऑपरेटर हो गए, अगर हम इसको प्रमोट करेंगे तो इट ऑब्वियसली बी अ बिग एड ऑन टू द एंटायर स्टेट इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर टूरिज्म।
1: जिस तरह सांगे सिरिंग ने एक अनकन्वेंशनल जो एक सर्विस बोले या एक फील्ड को लिया है, उसी तरह दूसरे यूथ किस तरह से आए? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स जितने भी की कहते ना कि वो एक स्टीरियोटाइप है, क्या इसी लाइन पे जाना है एक पर्टिकुलर, लेकिन वो भी अब टूट रहा है।
0: हाँ आई मीन टूट तो नहीं रहा, लेकिन क्या है कि बात लोगों में जागरूकता तो और बढ़ रहा है
1: जी।
0: टूरिज्म तो एक फील हो गया, लेकिन आजकल लेटली आप काफी सारे यूथ को डिफरेंट डिफरेंट जो इंडस्ट्री में जाते हुए देख रहे हो, तो उसमें मैं तो फिर से यही बोलूंगा कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जब मैंने मेरे माँ को बोला था कि मुझे टूरिज्म करना है, तो उनका भी सेम था कि टूरिज्म ही क्यों करना है और ना आप गाइड करके क्या करोगे, नॉट ओनली माय मदर बट एंटायर फैमिली का ये सोच था, लेकिन आई वाज लाइक यू नो कॉन्फिडेंट इनफ टू कन्विंस माय मदर और उन्होंने बोला कि हाँ जाओ। तो आई मीन पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है ना वो जो मस्ट है, क्योंकि ये चीज में जो है नॉट ओनली इन टूरिज्म लेकिन आप जो भी एंटरप्रेन्योरशिप में आप बिजनेस करते हो अपना, वो ओवरनाइट टर्न नहीं होगा जैसे मैंने आपको कहा था, तो उसमें आपको स्ट्रगल तो आएगा। तो पेरेंट्स जिस मतलब जो आपको सपोर्ट देगा ना वही आपका बिगेस्ट फाउंडेशन होगा और फिर आपका हार्डवर्क तो वो रंग लाएगा ही।
1: तो आपकी तरह जो कोई टूर ऑपरेटर बनना चाहता है या तो गाइड बनना चाहते हैं, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोविजन दिया गया है ताकि जिसको लेकर वो और आगे बढ़ सके?
0: हाँ जी, ऐसा काफी सारा है। मान लीजिए जैसे कि मैंने तो क्लास 10 में मैं समझ गया था कि मुझे टूरिज्म करना है, तो सिमिलरली अगर कोई स्टूडेंट हो गया जिनको टूरिज्म के बारे में पढ़ना है या फिर टूरिज्म कोर्स करना है, डिप्लोमा करना है, ग्रेजुएशन करना है, तो जो डिपार्टमेंट के अंदर में SMSS का एक स्कीम है, सो आई माइट बी रॉन्ग इन द वर्ड्स नो, तो अगर वो डिपार्टमेंट में जाए तो फिर डिपार्टमेंट विल सपोर्ट देम आई मीन हिम और हर इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन में।
1: तो जाते जाते हमारे सुनने वालों को क्या कहें?

0: आपने मुझे बुलाया यहाँ पे एज यंग एंटरप्रेन्योर, तो मैं तो यही बोलूंगा कि अभी जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सभी को बेस्ट विशेस, प्लस मैं एज एडवाइस मैं यही यही बताऊंगा कि प्लीज हैव पेशेंस एंड ट्राई टू बी हम्बल इन व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड यू विल अचीव योर गोल।
1: तो संगीत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने बारे में, साथ ही साथ अरुणाचल टूरिज्म के बारे में और हॉलीडे स्काउट के बारे में इतनी सारी जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी।
1: ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण एफ एम 103.1 MHz है। अभी आप सुन रहे थे वीकली इन्फोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान। और आज की कड़ी में हमारे मेहमान थे अवार्ड विनिंग यंग एंड डायनामिक एंटरप्रेन्योर फ्रॉम बोमडिला वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, श्री सांगी श्री। हम फिर हाजिर होंगे एक और नए मेहमान के साथ हमारे अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। बारहवा ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडप में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। श्री यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे सहयोग को और मजबूत करने तथा पर्यावरण कार्य समूह के लिए सकारात्मक परिणामों हेतु सार्थक तरीके से जुड़ने को उत्सुक हैं। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवा संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाश अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। भारत और श्रीलंका के बीच गॉल्फ में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को पहली पारी में 284 रन पर ऑल आउट कर दिया। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की उन्नति हुड्डा और म्यांमा की थेत हतारथुजार के बीच मुकाबला जारी है। भारतीय खिलाड़ी ने कुछ देर पहले ही पहला गेम 22-20 से जीत लिया है। लक्ष्य सेन आज शाम पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई से हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The 12th BRICS Environment Ministers meeting is underway at Bharat Mandapam in New Delhi. The meeting serves as a platform for ministers, senior officers, policymakers and experts from the member countries to engage in substantive discussions, foster consensus and strengthen environmental cooperation. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, is presiding over the meeting. In a social media post, Mr. Yadav said he is looking forward to further strengthening cooperation and engaging in a meaningful manner for positive outcomes for the Environment Working Group. The theme of India's BRICS chair

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रुपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ, जहां बात होती है हमेशा दिल से दिल तक। और स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे खास कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का, जहां दोस्तों हम बजाते हैं यानी आपके साथ शेयर करते हैं वो सारे गीत जो 60s से लेके 80s के दशक में बने थे काफी मशहूर। चलिए हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की एक बेहद पसंदीदा गीत, अच्छा तो हम चलते हैं से।
2: अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा

0: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज़। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

दोस्तों, चलिए हमारे हिंदी क्लासिक म्यूजिक के इस सफर में अब सुनते हैं एक और गीत। हम सुनेंगे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड से, गाता रहे मेरा दिल।

दोस्तों आप सुन रहे हैं हिंदी क्लासिक म्यूजिक का सफर, जहां हम आपको सुनाते हैं 60s लेके 80s के दशक के कुछ सुनहरे गीत। और चलिए अब इस कार्यक्रम में हम सुनते हैं अगला गीत, जो कि ये गीत दोस्तों मेरे वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स में से एक है। और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और आशा भोसले की जुगल जोड़ी ने। बहुत ही प्यारा ये जोड़ी है, दीदी और बहन का, लता दीदी और आशा जी का। चलिए दोस्तों सुनते हैं फिल्म पड़ोसन से मैं चली मैं चली।

हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी

0: कहानी हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ, जहां बात होती है हमेशा दिल से दिल तक। और आप सुन रहे हैं हमारा खास पेशकश हिंदी क्लासिक म्यूजिक का। चलिए दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ आखिरी जो गीत शेयर कर रहे हैं वो है फिल्म कदी पतंग का ये जो मोहब्बत है, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, संगीत के निर्देशक है R.D. बर्मन साहब। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा हिंदी क्लासिक म्यूजिक का सफर यही खत्म होता है, लेकिन हमारा म्यूजिक का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा और आपको मैं सुनाना चाहती हूँ हिंदी फिल्म में गीतों का एक छोटा सा कारवा, बिना किसी रुकावट, बिना किसी एड ब्रेक, बिना किसी बातचीत के। तो चलिए एंजॉय करते हैं और लेते हैं मजा इस सुहाने मौसम का।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमा की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता

0: को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
2: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया, तिरंगा हो, जनगण मन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
3: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने जैसे सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरा नगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस

0: दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवा संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
1: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह दावा फर्जी है और वायरल वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी 2 दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के

गर्ल खिलाड़ी इसाइया अरुमनैया गम को अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमार की थेत हतार थुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासेमेन बेगतास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जौली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार। अब तैयार हो जाइए एक जबरदस्त नॉस्टैल्जिया राइड के लिए, क्योंकि अब आपके साथ है हिट्स ऑफ 90s का हमारा खास पेशकश। 90s क्या कमाल का दौर था। कैसेट प्लेयर पर रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड, रेडियो पर अपने फेवरेट गाने का इंतजार, फिल्मों के नए पोस्टर्स और दिल में वो गीत जो पहली बार सुनते ही अपने लगने लगे। इस दौर ने हमें दिए कुछ ऐसे यादगार बॉलीवुड सॉन्ग्स जो आज भी बजते हैं, हमें स्कूल कॉलेज के दिनों में ले जाते हैं, दोस्तों की महफिल याद आ जाती है, पहला क्रश याद आ जाता है, या फिर बस एक पुरानी खूबसूरत याद चेहरे पर मुस्कान ले आती है। तो चाहे आप 90s के डाई हार्ड फैन हो या उस दौर के गीतों को आज भी पहली बार नए अंदाज में महसूस कर रहे हो, ये प्रोग्राम आपके लिए है। अब बजेंगे एक के बाद एक 90s के बॉलीवुड हिट्स, रोमांस भी, मस्ती भी और दोस्ती भी, डांस भी और वो एवरग्रीन मेलोडीज भी जिनके बिना 90s की कहानी अधूरी है। तो वॉल्यूम जरा सा बढ़ा लीजिए, दिल को रिवाइंड मोड पर डालिए और तैयार हो जाइए एक म्यूजिकल टाइम के सफर के लिए। चलिए दोस्तों पहले सुनते हैं हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म बॉम्बे का ये बहुत ही अनमोल गीत। हम सुनेंगे तू ही रे, जिसके निर्देशक है AR रहमान।

दोस्तों, हिट्स ऑफ 90s में चलिए अब सुनते हैं एक और गीत। फिल्म दिल से सुनेंगे सुखविंदर की आवाज में, छैया छैया।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

90s का जब हम गीत बजा ही रहे हैं तो हम कैसे मिस कर सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम. हम चलिए सुनते हैं फिल्म जो जीता वो सिकंदर से ये गीत जिसका नाम है पहला नशा. इसे गाया है उदित नारायण और साधना सरगम की जोड़ी ने.

क्षमा कीजिए दोस्तों, चलिए हम सुनते हैं।

दोस्तों चलिए अब हम सुनते हैं एक और गीत, फिल्म दर से जादू तेरी नजर, जिसे गाया है उदित नारायण ने।

नहीं, आकाशवाणी ईटानगर डिब्रूगढ़, मीडियम वेव्स सी पाक सी सिप सी चुमसी मीटर्स हो पाक चेत सिप हा किलो हर्ट्स में नई चलांग खामते खामती हाउने कुमायो मने वन अंका लंगनी पीते सोंग हिंग पाक साउ तू नई इंगना जी पी मई सोंग हिंग साउ हो कौ खाम लुक नांग प्रिया लुंग फोय मई हनई थोम तिखा नेन अगस्त नई सिप पेट वन नई खा मु सिप सोंग ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग नई कचम नेयाती न्यू दिल्ली मई को तांगन सुयो मीटिंग नई पिन नेयाती न्यू दिल्ली मई को तांगन न मई पिन प्लेटफॉर्म चफा मिनिस्टर सीनियर ऑफिसर्स पॉलिसी मेकर्स चफा मेंबर्स मंग तंगलाई चा आउ एंगेज अन सब्सटेंसिव डिस्कशन आउ फोस्टर कंसेंसस कंसम स्ट्रेंथ एनवायरमेंटल कॉर्पोरेशन नई आउ पिन नम हो मीटिंग ने मई यूनियन मिनिस्टर चा एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हिची भूपेंद्र यादव औ हिटकन औमा नमहो टीम अन इंडिया ब्रिक्स चेयरशिप सोंगहिंग साउ हो नई कचम अन औपोकन रेजिलियंस इनोवेशन कॉर्पोरेशन खनसम सस्टेनेबिलिटी नमहो सोशल मीडिया पोस्ट मई मंचाओ मिस्टर यादव लौखई माने मन्ने फर्दर स्ट्रेंथनिंग कॉर्पोरेशन खनसम एंगेजमेंट चा औ मीनिंगफुल मैनर चफा अंगनी अन्नाम आउटकम चा एनवायरमेंट वर्किंग ग्रुप औ हेड मा नम निसी खैमा नम हो वुमन खनसम चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर दसांगलु पुल नै कचम नै कचम अन पोक मल बिल्डिंग नै नेयावांग गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल नै टी वाला चेला अंजाव मै वन मंगा अनपुन का नई पुटहू तक कन

0: नमस्कार दोस्तों, फिल्मी दुनिया की गर्मा गर्म खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर है हम बॉलीवुड में। आज सिर्फ ग्लैमर और एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज और पर्सनल स्ट्रगल्स भी हेडलाइंस में है। तो चलिए डालते हैं नजर आज के कुछ बड़ी फिल्मी खबरों पर। सबसे पहले खबर है सिन्हा परिवार से। वेटरन एक्टर और टीएमसी लीडर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सोनाक्षी ने दिल्ली में चल रहे सीजेपी लेड प्रोटेस्ट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस ट्रोलिंग को लेकर बीजेपी आईटी सेल पर आरोप लगाया और कहा कि उनकी बेटी को टारगेट करने वाली ट्रोलिंग मैन्युफैक्चर्ड है और पेड ट्रोल्स के जरिए की जा रही है। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि क्या सोनाक्षी कभी पॉलिटिक्स में कदम रख सकती है, तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अपनी बेटी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सोनाक्षी एक वर्दी डॉटर है और उनके मुताबिक उनमें काफी हिम्मत है। दोस्तों हम आगे और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म प्यार इम्पॉसिबल से अलीशा।
1: Boy.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: दोस्तों, बात है सनी देओल की। गदर और गदर 2 के एक्शन हीरो सनी देओल ने अपनी जिंदगी के एक मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात की है। एक्टर ने बताया कि गदर 2 से पहले उनके करियर में ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें अच्छे स्क्रिप्ट्स और मेकर्स नहीं मिल रहे थे। फाइनेंशियल स्ट्रगल का जिक्र करते हुए सनी देओल ने बताया कि उन पर लगभग 56 करोड़ का डेट भी था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुश्किल वक्त के बावजूद उन्होंने अपनी खुशी को कभी खोने नहीं दिया। सनी ने कहा कि जब वो डेट में भी थे तब भी वो खुश थे और अपनी जिंदगी जी रहे थे। और फिर आए गदर 2, जिसने सनी देओल के करियर को एक बार फिर जबरदस्त कमबैक दिया। एक्टर इमरान खान ने गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म और देश से मोहब्बत के बीच फर्क समझाते हुए कहा कि किसी पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट की आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी पॉलिटिशियन पूरा देश नहीं होता, देश उसके नागरिक होते हैं। उसके इस बयान को सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने सपोर्ट किया, जबकि कुछ लोगों ने इसे बीजेपी पर इनडायरेक्ट कमेंट के रूप में देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बॉलीवुड अपडेट्स। हम फिर लाएंगे आपके लिए ढेर सारी गर्मा गर्म खबरें बॉलीवुड से। अब आप सुनेंगे दोस्तों वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि आगस्ट लेट मनी बन आज 4 तारीख मंगलवार इपोहांसों आजमबाजी पुनी मिनट मुख्य फिशम के वांचो साइका पां कपाई पंवान का हो पंवान फाले वंग का वंगसुर ब्रिक्स होतम देश फॉर इन्वायरमेंट मिनिस्टर थम अंक्या होतम बन आनी अंपा मीटिंग तुसो आनी न्यू दिल्ली मक्या भारत मंडपम हम मा आसो अपोलो तैले बो महाया तुसो ब्रिक्स होतम देश फॉर मिनिस्टर्स आचोलो ऑफिसर्स पॉलिसी मेकर्स ये एक्सपर्ट थम जोंग मा इन्वायरमेंटल चावन जंगहान हान पक मा ताता फै आशम अकोइले मोकले साले अंक्या मोंगटे कंसुंग होतुन आत्माचन अंक्या मो वनजे तियाफन अंक्या ता प्लेटफॉर्म अंग सज्जाई तेले कहोमा अजंग बा आजा क्या जंगपुंग महाजा तुसो थेम अंग बिल्डिंग फॉर रिसाइलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ले थमले तेले बो मा हजा तुसो अखो अंग इंडियन इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव अंगोले तेले Arunachal Pradesh Women and Child Development Minister Dasang Lupul e Mani Anjau District Wala Honoi Ma Azan le Zingijau le Lantan Government Primary School Government Upper Primary School RCC Building Ham Hoka Daple Pul e Hama Van Kezang Van Kaze Ma Haja Hosan Infrastructure e Haja border district to nosam line on ngang not facilities fan tamtai le achan amai le pha angkya bo mahaja hozan amai infrastructure e nosam mong kan ma chu lai e nga ke angkya mong te kan sung tamtai le na achan adan le pha haya le ong hu tai pu le van le ka ho ma ajang ba minister pul haja phai ma hawai honoi ma district level monitoring committee kam district level review meeting tu so ma hakle bo ma chi e haja tu so ma district ma mok noi sa ngo tai kya mo ma mo scheme sia project pho homo kho set thop man pa pak ticket to le 34 tuting inkyong assembly constituency mla alo libang e mani inkyong township ma hwak azam khat kha kya जाउ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होका डाबले काहोमा अजंग बाजे प्रोजेक्ट फो इंक्यों टाउन जंग चिक्सो का कोई हनपकमा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होमोकोसत फन आसाक आमाई पुकुमा स्वच्छ भारत मिशन मखंग ए जिंग जाउ क्या इंक्यों होनोय मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी इंक्यों सिमर मार्केट मा लोकल थाले जों ताई मि थम हान पक मा अंग जिंगे जौ क्या वेंडर मार्केट हाट बो मा इंक्योंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंग क्या ता होजन इंफ्रास्ट्रक्चर एकेडमिक बिल्डिंग हम ले चंग ले तावंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस थम ए होम सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस तासी दारंग ए वनजे तमसान अन क्या ए मनी तावंग होनोई मक्या ग्यालवा सांगयांग

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम वांचो भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां बात होती है हमेशा दिल से दिल तक। चलिए अब दोस्तों आपको ले चलते हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स की तरफ। और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के इस कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से फिल्म का एक नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले। दोस्तों हम सुनेंगे फिल्म विवाह का, जो कि रिलीज हुई थी 2006 को, जिसे डायरेक्ट किया था सूरज बरजातिया ने। इस फिल्म के सारे गीतों को कंपोज किया है रविंद्र जैन ने। और चलिए सुनते हैं कुछ गीत, जैसे मुझे हक है, दो अनजाने अजनबी, मिलन अभी आधा अधूरा, जैसे बहुत ही प्यारे प्यारे गीत है इस एल्बम में। और उन सभी को हम सुनेंगे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ब्रेक के, नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले।

0: दोस्तों चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और हम अभी सुनेंगे ईदू मिश में श्रोताओं का कार्यक्रम ईदू मिश में भाषा में समाचार, लेकिन ब्रेक के बाद हम फिर वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने लिया था पोज।
1: अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं ईदू मिश में श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: ऐसा आकाशवाणी ईटानगर पुला पुचे जी होल यू आंडोली एतानी ईद मिशमी आहोला थी जी तरगालम्बो ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर आलम्बो चे बुहलुनी लेना मीटिंग है। मैं दिल्ली माचे भारत मंडपम मने आखा पैंबा आहोगा ब्रिक्स मेम्बर आतिमा चे आजापया आलम्बो खिमेगने आमोरा बुता जरगाव चिपुआ चिचागा मीटिंग है। यूनियन एनवायरमेंट ने फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव में जिनका महो एचाबुची मीटिंग में है। अमोरा बिता जोगा हुए चिपुआ प्यादो चिचगा आहोगा अरुणाचल प्रदेश वुमेन ने चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर दसांगलू पुल में बुनी अंजाव डिस्ट्रिक्ट वाला आतिकोचे गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल के बने ओमे अजितिगा बची आयपहाय बने आ ओमे मैम आतिपहे डिस्ट्रिक्ट माचे म्या आलम्रो जू ना आहिव मा प्या आवे आवशादा लाइबादा आहोगा आपा कल्चरल अफेयर्स तो ने साइंस तो ने टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री बातु ते होगा पूल में डिस्ट्रिक्ट माचे प्रोजेक्ट योगान दो चिपो आथु सुगा ने पीएम आवास योजना माचे आमे है आकुआ पे ना उंजी खीन जो निजी ना ने अरुंदा डिपार्टमेंट माचे आजा है तागो लाते ओंगे पता आहोगा अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट यंग्योंग आतिको एयरफील्ड आनंदो चे मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटी ओमे यंग्योंग सीमार आतिको चे अंजी आमे मु पेंडोर मार्केट तो ने यंग्योंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल माचे एकेडमिक ओमे है यिंग्योंग टूटिंग एमएलए आलो लिबांग में बुनी आयपहा बदा आहोगा स्वच्छ भारत मिशन कोकोमा ने अजितला आ फैसिलिटी में अतिका से दे अखवे मा पेया आवे आओ महोम वेंडर मार्केट में इचुआ आम आया अम्रो आवे आवे आई दोने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल माचे ओमे में आजो अहिनो मा पेया आवे आओ शदा लगा तवांग डिस्ट्रिक्ट माचे एसपी तासी दरंग मेला नेगने तवांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस में बुनी ग्यालवा सांग्यान ग्यात्सो हाई एल्टीट्यूड आउटडोर स्टेडियम माम कैसाबा अपलगा दा ला होगा आहा एचला पुची जहो माचिनी लिबा मेराग लामा लाड्रो ग्यात्सो इंडिपेंडेंस कप फुटबॉल टूर्नामेंट आखगा महो आ तामु स्टेडियम है ताइबा एगा बचाथुगने पुलिस डिपार्टमेंट में अली अपन निगला धान ने पुलिस में ला होगा ने अतिकाची इमु में अतिका से दे अखाउची पो उतुजे ना लगा दा आहोगा ओको खे इंडिया अतिकाची असला ठुजी नला ने खिनीनी गबने कैंपिंग अखगा जा है बुनी तिराब डिस्ट्रिक्ट खुंसा तिको ने अखंदो गला दा ला होगा आ कैंपिंग को कोमाने एहेंदो बुलेट बाइक रैली ठू ने कुछ लामगा आखा आशे ऐने बंदे मातरम आशे लापे उखो प्रोग्राम अखने गला दा ला होगा आ मजामा इंडिया अतिका दिनी बागा इन एना ऐने इंडिया में अतिहता तो नाम इहुनु बा इंब आ कैंपिंग को माने तिराप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट ने कल्चर डिपार्टमेंट दोने आई पी आर डिपार्टमेंट में आरोगने एना नगला दा ला होगा रिवाज माचे वेलनेस सेंटर में बुनी रिवाज कैंपस माने हूँ निगे बने जोता को माने मादो ने एक ताई चंदो हिलाओ चिपो ट्रेनिंग गे बुनी ने अब एचला पुची जानियो एहो माची ने लिबा गे बने आखा पगला दा ला होगा आमा आहितो आमे आयुर्वेदिक तामाचे मिंगी अतु तेजियाओ दा ला होगा इंडिया माचे आयुष सिटी में बुनी मैं दिल माने बी डब्ल्यू ए बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप अखगा माचे फाइनल मा आया ची चैंपियन चाइना माचे सी यू की है अन्यो खे होलुपी होलोसो अन्यो खे गे तो ने अन्यो खे होलुखिनी पॉइंट माने अनेगने एतानुची वर्ल्ड चैंपियन शाही बादा होगा इंडिया मा जे किसा बैडमिंटन ताया मा पीवी सिंधु दोने तेरेसा जोली ने गायत्री गोपीचंद अचगला टीम में कानी राउंड मा खिगा बमा हो गोपी प्रिया सेल्वम ने समरन सिंगी अपला याकू टीम में को स्पेन मा जे निकुल करोला दोने कार्मेन जिमेनेस अपगला टीम है अन्यो कानी अन्यो दोने अन्यो के होलोपी पॉइंट माने अनेगा बदा आहोगा कैप्टन अतिकाला प्रग पपुम पर डिस्ट्रिक्ट तवांग वेस्ट कामिंग ईस्ट कामिंग लोअर सुबंसी शियांग चीथू लोहित दोने चांगलांग डिस्ट्रिक्ट मचे अतिका बाग मा अबुन्या नया इंजतानु आयो सदाने ईटानगर मेट सेंटर मच में ला होगा एतनसी इद मिसमी आहो अलीमाओ दबाए
3: एचा आकाशवाणी ईटानगर नाले इद मिसमी प्रोग्राम मा एचमता आशे अहोसो खिया महो एतनी हेंदो दिनेस्ता चोची चाशे ची अंजी
0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे इरुमिश्मी भाषा में समाचार और अब इस समाचार ब्रेक के बाद चलिए हम शुरू करते हैं हमारा हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का कारवा और वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने लिया था पोज। हम सुन रहे हैं फिल्म विवाह जो कि रिलीज हुई थी 2006 को का एल्बम नॉनस्टॉप बिना किसी ब्रेक बिना किसी बातचीत के बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग्स और आप मजा लीजिए दोस्तों। चलिए सुनते हैं विवाह फिल्म का ये गीत।

0: 75 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे साथ सफर को तय करना चाहते हैं तो आप बने रहेंगे मेरे साथ यानी कि एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, यानी कि आप सभी के अपने अरुण एफएम पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। वो कहते हैं ना दोस्तों कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी थॉट के साथ ही हम अपनी तीसरी प्रसारण सेवा की आगाज करते हैं। नमस्कार, आदाब, सस्ते अकाल, एंड अ वेरी वेरी वार्म इवनिंग फ्रेंड्स। एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आम सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। संचरण निष्पादक गए रहते, तकनीकी अभियंता ताना आतुम तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी का तह दिल से स्वागत करते हुए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की अपनी आरजी अपर्णा मौजूद है आप सभी के खिदमत में, करने आए हैं एक बेहद रंगीन सी शाम केवल आप दोस्तों के नाम। लेकिन इससे पहले हम शुक्रिया अदा कर देते हैं आरजे मांझ का, जिन्होंने अपने सेकंड ट्रांसमिशन के दौरान अपनी भरपूर आप सभी के मनोरंजन की है। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत बहुत शुक्रिया आरजे मांझ मुझे स्टूडियो हैंडओवर करने के लिए। और दोस्तों, आपसे बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे गुड इवनिंग ईटानगर के प्रोग्राम से। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pay Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Pare Hydro Power Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
4: Attention! Pare Hydro Power Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वारी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
5: गुड इवनिंग ईटानगर।

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का गुड इवनिंग ईटानगर के इस सेगमेंट में। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आप सभी को बता दें कि ये वो सेगमेंट होता है, एक कंपोजिट सेगमेंट होता है, जहां पर ना हम आपकी केवल मनोरंजन करवाते हैं फ्रेंड्स, बल्कि आपको कुछ खास इंफॉर्मेशन, ज्ञानवर्धक जानकारियां भी देते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए, आज 17 अगस्त है और आज माफ कीजिएगा 18 अगस्त है, तो आज के दिन इतिहास के पन्नों में क्या क्या खास हुआ है इसके बारे में हम जानकारी तो आपको देंगे, लेकिन इससे पहले हम आपकी जो है आपको एक प्यारा सा गीत सुना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहद पसंद आ रहे को है। एंजॉय कीजिए।

चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि 18 अगस्त के दिन इतिहास के पन्नों से क्या क्या जो है निकल कर बाहर आता है ना दोस्तों। हम आपको बता दें कि 1227 को मंगोल साम्राज्य के संस्थापक और शासक चंगेज खां का निधन आज ही के दिन हुआ था। एक और बेहद खास बात वो है कि 1945 में जापानी मीडिया के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी और हमारे देश के वीर, जिसे हम कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, की ताइपेई में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। हालांकि ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। 1950 में भारत के असम राज्य में 8.6 तीव्रता का भयानक भूकंप आया था, जो 20वीं सदी का सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से गिना जाता है। 1951 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में देश के पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT खड़गपुर की औपचारिक शुरुआत हुई थी। तो ये थे आज के इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ सुर्खियां जो हमने आपसे साझा की। चलिए, और गीत आप सभी के इंतजार में है, एक्चुअली बहुत ही मजेदार गीत, तो एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों इसी के गीत के साथ ही गुड इवनिंग ईटानगर प्रोग्राम अभी यहीं पर संपन्न होता है। अब से बस कुछ ही देर में आप बारी बारी से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार तथा नोक्ते समाचार सुन सकेंगे। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। अरुणाचल प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री दासांग लोपुल ने अंजाव जिले में गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल वाला में नवनिर्मित आरसीसी स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। 34 तुतिंग यिंगक्योंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलो लिबांग ने राज्य के अपर सियांग जिले के यिंगक्योंग टाउनशिप में 3 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तवांग पुलिस अधीक्षक तासीदारंग की पहल पर जिला पुलिस तवांग ने ग्यालवा सांग्या ग्यात्सो हाई एल्टीट्यूड आउटडोर स्टेडियम में तवांग में स्वच्छता अभियान आयोजित किया। आरोग्य पंचक्रम एवं वेलनेस सेंटर रिवॉच ने अपने परिसर में पंचक्रम चिकित्सा पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। राज्य खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रासी जोली और बेल्लो गायत्री गोपी चंद्र सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। नई दिल्ली में VWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमार के थेत हतार थुचार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में और टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत ने रचा इतिहास। 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आज आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों ने मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा की। आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए एक सतत पर्यावरण के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% की अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों को दृष्टिकोण और योगदान को बेहद महत्व देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
2: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
1: अरुणाचल प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री दासांग लोपुल ने अंजाव जिले के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल वाला में नवनिर्मित आरसीसी स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि नई सुविधाओं से छात्रों को सीखने के लिए सुरक्षित और बेहतर माहौल सुनिश्चित होने के साथ ही सर्वसम्मति जिले की शिक्षा की सुविधाएं और मजबूत होंगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बेहतर सुविधाओं से छात्र ज्यादा उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई कर सकेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। बाद में मंत्री ने हवाई में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी और जिला स्तरीय समीक्षा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता भी की और चल रही योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के कामकाज की समीक्षा की। बैठक के दौरान मंत्री ने विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे विकास और कामकाज से जुड़े अहम मुद्दों का तय समय में समाधान सुनिश्चित करें। 34 तुतिंग यिंगक्योंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलो लिबांग ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के यिंगक्योंग टाउनशिप में 3 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें एयरफील्ड और कब्रिस्तान के पास स्थित मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यिंगक्योंग शामिल है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत विकसित ये केंद्र ठोस कचरा प्रबंधन को मजबूत करेगा। यहां की रिसाइकिल योग्य सामग्रियों का व्यवस्थित पृथक्करण और रिकवरी की जाएगी, जिससे स्वच्छता में सुधार, पर्यावरण संरक्षण और नगरपालिका कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन में मदद मिलेगी। इसके बाद श्री लेबांग ने यिंकियोंग के सीमार मार्केट में वेंडर मार्केट का उद्घाटन भी किया। यह सुविधा स्थानीय विक्रेताओं और छोटे व्यापारियों को व्यवस्थित एवं उपयुक्त बाजार उपलब्ध कराने के साथ साथ सुव्यवस्थित व्यावसायिक गतिविधि और शहरी सार्वजनिक स्थानों के बेहतर प्रबंधन में सहायक होगी। तवांग पुलिस अधीक्षक तासी दारांग की पहल पर जिला पुलिस तवांग ने ग्यालवा सांग्यांग 800 हाई एल्टीट्यूड आउटडोर स्टेडियम तवांग में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। गत 15 अगस्त को हाल ही में संपन्न हुए मेराक लामा लोत्रोय 800 इंडिपेंडेंस कप 2026 फुटबॉल टूर्नामेंट के बाद स्टेडियम परिसर में काफी मात्रा में कचरा जमा हो गया था। परिसर को फिर से स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान के माध्यम से समुदाय को सार्वजनिक स्थानों और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ, साफ सुथरा और कचरा मुक्त रखने का व्यापक संदेश दिया गया है। जिला पुलिस ने नागरिकों, विशेषकर सार्वजनिक स्थानों पर आने वाले लोगों से सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने और कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित करने की अपील की। रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ल्ड एंशियंट ट्रेडिशन कल्चर एंड हेरिटेज रिवॉच के आरोग्य पंचक्रम एवं वेलनेस सेंटर द्वारा अपने परिसर में पंचक्रम चिकित्सा पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। आगामी 26 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस कार्यक्रम में इच्छुक चिकित्सकीय थेरेपिस्ट और आम जनता के सदस्य शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद की महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धतियों में से एक पंचक्रम के बारे में लोगों को व्यवहारिक और प्रत्यक्ष प्रशिक्षण का अनुभव प्रदान करना है। केरलम में विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है, जो इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशान ने विजिंगम में यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले

0: जहाज को दो कंटेनरों को भी रवाना किया है।
1: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विजयनगरम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा है कि देरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी त्रिशा जोली और पेलिल्ला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसाया अरु मेनायागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित किया गया है। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमार के थेत हतार थुदास को सीधे गेमों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्य और अमृता प्रथमेश तथा कार्तिकी की जोड़ी एमेर सोमेज में योसेमन ब्रेकग्रास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आज श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के चौथे दिन टेस्ट क्रिकेट में 600 छक्के पूरे कर लिए हैं। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय और दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के चौथे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने आज की पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 40 रन बना लिए हैं। सेमीकॉम इंडिया 2026 का 5वां संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शन और करीब 220 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शन में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन शामिल होंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल्स पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियां, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद करने किए जाने पर खबरों पर गंभीरता जताई है। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय मॉर्गन बागरा। The 12th BRICS Environment Ministers meeting was held at Bharat Mandapam in New Delhi to foster consensus for strengthening environmental cooperation among the BRICS nation. The two-day meeting served as a platform for ministers, senior officers, policymakers, and experts from the member countries to engage in substantive discussions for sustainable future and environmental cooperation. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, presided the meeting. The theme of India's BRICS Chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Addressing the nation, Mr. Yadav reaffirmed the importance of aligning policy, technology and public participation towards building a sustainable planet following a humanity-first approach. He said, India has reduced the pollution emission intensity by more than 37% between 2005 and 2022. Mr. Yadav said that, as chair, India remains committed to fostering an open, constructive and consensus-based dialogue and it greatly values the perspectives and contributions of all member countries. Defence Minister Rajnath Singh, to reflect off the All India Girls High Altitude Long Trek Aparajita Parangla 2026, a flagship adventure activity of the National Academy.

0: Candidate Corps in New Delhi. The trek will traverse the 250-kilometer-long Parangla Pass, connecting the Spiti Valley of Himachal Pradesh with the Changthang region of Ladakh over a period of 30 days. The trek is regarded as one of the country's most challenging high-altitude trekking routes. A team of 28 girl cadets will be led by three women officers representing the three services. BJP National President Nitin Naveen has appointed new state in-charges for Uttar Pradesh, Punjab and Gujarat. Vinod Tawde has been appointed as in-charge of Uttar Pradesh and Jagdish Ishwar Bhai Patel as a co-in-charge. Dr. Satish Punia has been appointed as in-charge of Punjab and Tarun Chugh as in-charge of Gujarat. The Enforcement Directorate has conducted searches at several locations in Karnataka linked to alleged Karnataka Public Service Commission KPSC paper leak scam. Former chairman of KPSC Shiva Shankarappa S. Sahukar is accused of examination paper leaks, tampering with OMR sheets and demanding bribes ranging from 70 to 80 lakhs per candidate to recruit government veterinary officers. It is also alleged that a private company acted as a middleman. In this background, ED conducted searches in the residence of Shiva Shankarappa and a few former members of KPSC and officers linked to private company. The investigation is related to irregularities and possible involvement of people connecting with the corrupt recruitment process. The Defence Ministry has notified the sixth positive indigenization list comprising of 405 strategically important items with an estimated business potential of 3,070 crore rupees. This include 16 items of the Indian Coast Guard and 389 items of defence public sector undertakings. The list contains line replaceable units, subsystems, sub-assemblies, spares, components and raw materials. The ministry said this sixth PIL marks another step in the government's efforts to promote self-reliance in defense manufacturing under the Atmanirbhar Bharat initiative. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that with the commissioning of the Dergaon-Dimapur pipeline, Nagaland is now connected to the Northeast Gas Grid and the National Gas Grid. In a social media post, Mr. Puri said the commissioning is a landmark step in making the Northeast a growth engine of India and will bring the region closer to a truly integrated gas-based economy. Deputy Chief of Army Staff Lieutenant General Rahul R. Singh has said the evolving nature of warfare has made rapid adaptation and integration of emerging technologies imperative for the armed forces. Addressing the Indian Military Review on Surveillance and Electro-Optics in New Delhi today, he said warfare has undergone a rapid and profound transformation, particularly since 2020. Mr. Singh said surveillance has evolved into a multi-layered architecture comprising space-based assets. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार. ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है. आइए अब सुनते हैं नौकते श्रोताओं का कार्यक्रम.
2: Anganganam Rangja Thasan Akashwani Tanaka Tipugur Barangja Mudbangabaji Sampadani Din Nangnok Tikobachotadan Taja August Jang Chivanasat Tarik Mongol Baja Kobachukuihan Jafun Tajamba Ade Kobot Hi Chotan Nongan New Delhi Va Bharat Mandapamko Chivanilo Bricks Environment Minister Ngutunpa Solajan Janja Adi Gore Ngutuntapa Ministers Kapodongolang Policy One Dealer Members Diakwa Expert Hi Substantive Nginpa Thomin Consensus Pa Twin Kapla Environmental Cooperation Pa Rong Si Rang Platform Jao. Adiko Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav Ma Ngong Thun Pa Preside Jao Honeka. Adiko India He BRICS Chairship 2026 Team Pa Dangeka Building for Resilient Innovation Cooperation La Sustainability Jao Ngama Jao Chujatubeka. Women and Child Development Minister Dasanglu Pulma अंजाव डिस्ट्रिक्ट वा वलानंग अन्यान आरसीसी गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल होंटा पर लांग को बाजा हरी को अन्यान इंफ्रास्ट्रक्चर पर मा न्यावे टे हिनंग सेफ लर अजाजा असन न्यावे रंग एनवायरनमेंट डम को जाड्री नंग एजुकेशन फैसिलिटी पर इरोंसी रजो मा मा जाओ जो ठोको एगा नाले खड़ी को पूल मा हवाई नंग डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमिटी मोटन पर में जेर होन बाजा अधिक को मो ट्वेंटा को पूल मा डिपार्टमेंट वा हेटे नंग अलम्री डेवलपमेंटल लर implementation issue hi homoy ko ta hoi rang chutho ko baja rok raman bani to ting in kyong assembly constituency mla alo libang ma maja in kyong township rang ban ram adong wo developmental kam he glo sit ko baja adiko kam he dangai ka airfield ke ko material recovery facility le burial ground he jam adiko swach bharat mission khan ko hone ka pama township ko solid waste management pa erong se raja अरिको इनक्यों व सिमर मार्केट को वेंडर मार्केट फुसंग ते हेतों टिंग हेमिन लांग को बाजा नाले खड़ी को एमएलए लिबंग मा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल इनक्यों हुई एकेडमिक बिल्डिंग पर में लांग को बाजा अरिको अरिन्यान फैसिलिटी पर मा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोंग से डम को न्यावे ते हेन रंग असन न्यावे एनवायरमेंट पर में इचो को बाजा मा चोटो को बाजा डिस्ट्रिक्ट पुलिस तवांग हेमा सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस तवांग तासी दारंग इनिशिएटिव खान का ग्यालवा संगयंग ग्यत्सो हाई अल्टीट्यूड आउटडोर स्टेडियम असासे ड्राइव पर होन वाजा अधिको जंगजा बंगथुन मेरंग लामा लोड्रे ग्यत्सो इंडिपेंडेंस कप 2026 फुटबॉल टूर्नामेंट 20 को अजा मोंगा कतक पर पेचेन वाजा अधिको अरे इनिशिएटिव नेमा हासोंग नंग पब्लिक ट्रेहे असाचे रंग मैसेज पर चोको रंगजा होने की नमा चोटो को वाजा तिरप डिस्ट्रिक्ट ना मजा जाए खु रंगवो हर घर तिरंगा अभियान 2026 पा न्याबे के ऑफिशियल्स ले डिस्ट्रिक्ट वा जनरल पब्लिक है मा न्या रंग खु सीमा पाठ का वक्ला मा ठुन मा जाओ अरे को अगस्त जंग मने खु तारिक में बंग ता कैंपेन पोट को तिरंगा बुलेट रैली क्विज कंपटीशन ग्रुप ले सोलो से है तो सेमिंग वा जाओ अरे का सोशल सर्विस पार्टीशन हॉरर रंगवो पर मोना ले रोग सेतलो इंडिपेंडेंस रंगवो पर मिन मानी वा जाओ अधिक प्रोग्राम पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीरा फेमा डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ला डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन हो है मा होन वाचा ngam jaw jo tho koega इंडिया ते आयुष शेट्टी मा मजा न्यू दिल्ली ना BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है मेन सिंगल खबम राउंड को वर्ल्ड नंबर 1 ला डिफेंडिंग चैंपियन शी यू कीपा जेन बाजा अधिक अजय बैडमिंटन लोम ते पीवी सिंधु ला वीमेंस डबल लोम ते ट्रेसा जॉली ले गायत्री गोपीचंद हिमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप सेकंड राउंड नंग वंग वाजा अरे को विमेंस डबल लूम के कवि प्रिया शेलवम ले सिमरन सिंहिनी मामिंग स्पेन के निकोल कारुला ले कार्मेन जेमेनिच ने 22-20-21-14 मजीन वाजा वंग मजा चोटो कोएगा तजा नमक देखो बट अतको जाओ लाथोड़ मोता
3: अरे खबर से ऐसे प्रोग्राम को रेट हम का खोवा रोन्या से जुटा नोगन।

0: दोस्तों, अभी आप बस सुन रहे थे नुक्ते समाचार। अगर आप हमारे नुक्ते श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही DRM के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप हमें यानी कि अरुण FM को सुनना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स FM बैंड के 103.1 MHz पर, यानी कि आकाशवाणी के अरुण FM पर। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे स्टूडियो में एक बार फिर। अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे। जी हाँ, इवनिंग ड्राइव प्रोग्राम के साथ। तो बने रहे अरुण FM के साथ और सुनते रहे अरुण FM को।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स OTT ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज़। अधिक जानकारी के लिए वेब्स OTT ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
0: इवनिंग ड्राइव में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोस्तों। चलिए आज हम एक छोटी सी कहानी से इस प्रोग्राम की शुभारंभ करते हैं। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उनका घर बहुत साधारण था लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट यानी कि मुस्कान रहती थी। एक रात गांव में बहुत तेज आंधी आई, बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लोग अपने अपने घरों में डर कर बैठ गए। लेकिन इसके आगे क्या होता है मैं बताती हूँ आप सभी को। इससे पहले हो जाए एक प्यार भरा गीत आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिए।

दादी अपनी छोटी सी मिट्टी की दिया वो लेकर आई और उसे जलाकर उन्होंने घर के बाहर रख दिया। पड़ोस के एक बच्चे ने ये जब देखा उसने पूछा, दादी इस छोटे से दीपक से क्या होगा, पूरा गांव तो अंधेरा में है। दादी मुस्कुराई और बोली, क्या बोली मैं बताती हूँ एक और गीत के बाद। एंजॉय कीजिए।

तो दोस्तों, दादी से जब उस छोटे से बच्चे ने पूछा कि दादी इस छोटे से दीपक से क्या होगा, पूरा गांव तो अंधेरे में है। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा मैं पूरे गांव का अंधेरा नहीं मिटा सकती, लेकिन जो मेरे दरवाजे तक आएगा उसके रास्ते का जो है अंधेरा मैं जरूर दूर कर सकती हूँ और रोशनी जरूर दिखा सकती हूँ। तो आगे आगे देखते हैं कि होता क्या है। एक और गीत आपके इंतजार में बिल्कुल तैयार है दोस्तों, एंजॉय कीजिए।

धीरे धीरे दोस्तों उस दीपक की रोशनी देखकर एक पड़ोसी ने अपनी लालटेन जलाई, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। कुछ ही देर में पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। बच्चा दादी के पास आया और बोला, दादी आपका छोटा सा दीपक पूरे गांव को रोशन कर गया। दादी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा अच्छाई कभी छोटी नहीं होती। एक छोटी सी मुस्कान, एक अच्छा शब्द और एक नेक काम किसी की पूरी दुनिया रोशन कर सकता है। हमें दुनिया बदलने के लिए बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी एक छोटी सी अच्छाई ही किसी के जीवन में सबसे बड़ी रोशनी बन जाती है। तो दोस्तों ये प्यार भरा स्टोरी जो है

दोस्तों, ये सब बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारी आज की इवनिंग ड्राइव का जो सेगमेंट है अब यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं फ्रेंड्स कि आपको हमारे इस सेगमेंट पे पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के अरुण एफएम को, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। बहरहाल हम से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे शाम की महफिल के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: Pare Hydro Power Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the riverbed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in riverbeds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
1: Attention! Pare Hydro Power Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने, तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सब सुन रहे हैं एफएम बैंक के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुण एफएम को, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हां दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सफर में आपके साथ, चंद लम्हों के इस खूबसूरत सफर में इनफैक्ट मौजूद है संचार निष्पादक गए रहते हैं तकनीकी अभियंता तानु आतुम तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ मैं रहूंगी, यानी कि आप सभी की अपनी आरजे अपना रहेगी आप सभी के खिदमत में अब से लेकर रात्रि के ठीक 9:30 तक। जी हाँ दोस्तों, वक्त हो चला है शाम की महफिल का। शाम की महफिल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और साथ ही हम इस वक्त उम्मीद करते हैं कि शायद आप अपने घर पर ऑफिस से लौट रहे हो या फिर आप घर में आ चुके हैं और जो है इत्मीनान से कप चाय या कॉफी के इश्क भरे चुस्कियां ले रहे हैं और रिलैक्सिंग मूड में हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपके शाम को परफेक्ट एम्बियंस खास बनाने के लिए अरुण एफएम लेकर आता है बहुत प्यारे प्यारे गीत, जहां पर आपकी सारी जो थकान दिन भर की है वो मिट जाती है। हमारा ये पूरा कोशिश तो रहता है कि आपके सारे दिन की थकान को हम मिटा दें अपने गीतों के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आपके लिए पेश खिदमत करेंगे बेहतरीन नगमों को, और वो कहते हैं ना दोस्तों कि ढूंढ ही लेंगे तुझको जब इस दिल को मिल जाए फुर्सत, मौसम आए और चले गए और देखती रही कुदरत, तेरे ही ख्यालों में बैठे रहे सोच के। जी हाँ, कि तेरे ही ख्यालों में बैठे रहे सोच के कि कब मिलेगी इस दिल को फुर्सत। एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत सी गीत को।

0: मुश्किल से।
1: दोस्तों आप सब आनंद उठा रहे हैं शाम की महफिल के सेगमेंट के साथ, और हम कोशिश में जारी है कि आपको बेहतरीन नगमे पेश खिदमत करें हम। जी हाँ दोस्तों, और आपकी शाम को कुछ खास बना दे। कहते हैं ना दोस्तों कि प्यार की शुरुआत अक्सर शब्दों से नहीं, निगाहों से होती है। एक नजर मिलती है, दिल कुछ कहता है, और फिर वही धड़कनों में से जो है खूबसूरत कहानी बनने लगती है और कहानी लिखने लगती है। आज ये जो गीत अब हम पेश करने जा रहे हैं, ऐसे ही नजरों, कुछ अनकहे एहसासों और मासूम मोहब्बत की याद दिलाता है, जिसे महसूस तो किया जा सकता है लेकिन शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल होता है। तो आपके अगर जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिसकी सिर्फ एक नजर आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है ना दोस्तों, तो बिल्कुल ये गीत तो आपके लिए है। एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों इस बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही, जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी आज की शाम की महफिल का ये सेगमेंट जो है अब ये संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं फ्रेंड्स कि आपके शाम को खास बनाने में हम कामयाब हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल आप सब आनंद उठा रहे हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम पर। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और अब आप आनंद उठा पाएंगे बैक टू बैक सॉन्ग्स के साथ, लेकिन ले लेते हैं इससे पहले एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक। आप सब बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Attention, Pari Hydro Power Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
3: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रुपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
4: दिल से दिल तक बात पहुंचे, मिलते मिलते सनम। ओ
5: गीत संगीत,
6: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
5: प्यार भरे अल्फाजों में
6: दिल से दिल की बात,
5: बस आपके नाम।
6: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: वाकई दोस्तों, आपके दिल से हमारे दिल का रिश्ता वाकई पुराना है, तभी तो हम आ जाते हैं बार बार आप सभी के खिदमत में, आप सभी का मन पसंदीदा प्रोग्राम्स लेकर। मेहरान आप आनंद उठा पाएंगे बैक टू बैक हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ, तो झूम जाइए इन झूमती हुई गीतों के साथ।
1: पापा मम्मी के लिए।

उषा उत्तुप के गाए इस धुआंधार गीत के साथ ही दोस्तों हमारे आज के हिंदी फिल्मी गीतों का ये सेगमेंट अब यही संपन्न होता है। हम आप सभी को बता दें कि अब से बस कुछ ही देर में यानी कि शाम के ठीक 6:30 का वक्त रहेगा आदि समाचार का, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ, सुनते रहे अरुण एफएम को।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आदि समाचार। अगर आप हमारे आदि श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी। जी हाँ, मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हज पर। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप मेरे साथ आगे के सफर तय करना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी एफएम बैंड के 103.1 मेगा हज पर, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम पर। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं दोस्तों आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। बहरहाल दोस्तों, वक्त हो चला है आज के कलाकार का। वैसे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आज के कलाकार वो सेगमेंट होता है जहां पर हम एक ही अदाकार, फनकार, गीतकार, संगीतकार, यानी कि फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई जो है, जो भी लोग जुड़े हुए होते हैं, उनके बारे में हम बातें करते हैं और उनके सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स को आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की जो है इस सेगमेंट में एक ऐसे एक्ट्रेस के बारे में बात करूंगी कि जो कि 90 के दशक में कुछ ही साल बेहद फेमस रही, बट अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ना कि कब क्या हो जाए कोई चीज का भरोसा नहीं, बस वही हुआ। लेकिन हम इससे पहले जो निगेटिव बातों के बारे में बाद में बातें करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं उनके बारे में बता दूं, आज जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूं, अपने वक्त की सुपर डुपर हीरोइन अनु अग्रवाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली महेश भट्ट की फिल्म, सुपर डुपर हिट फिल्म, अगर हम कहें 90 की सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट फिल्म और नए चेहरे के साथ फिल्म आशिकी से, जिसमें उन्होंने राहुल रॉय के साथ भूमिका निभाई थी। अनु अग्रवाल का जन्म 11 जनवरी को न्यू दिल्ली में हुआ था। उनके जन्म के वर्ष को लेकर भी विभिन्न स्रोतों में 1966-1969 दोनों का जो है उल्लेख मिलता है, और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की, गोल्ड मेडल हासिल किया। स्कूल के समय से ही उन्हें अभिनय में रुचि थी और उन्होंने थिएटर में भी सक्रिय रूप से काम किया। तो दोस्तों, जब हम अनु अग्रवाल के बारे में बात करते हैं, हालांकि इनकी बहुत कम फिल्में आई, बताऊंगी क्यों कम फिल्में आई थी, लेकिन 90 के दशक की जो सबसे ज्यादा मशहूर फिल्म थी, यानी कि महेश भट्ट के निर्देशन में बनी आशिकी फिल्म, उससे उनको परिचय मिली और ये सुपर डुपर हिट रही। तो हालांकि इनके बहुत कम फिल्में बनी हैं, तो इनके जो सबसे ज्यादा सॉन्ग्स पॉपुलरिटी जिस फिल्म ने गेन किया वो आशिकी ही फिल्म थी। तो चलिए मैं कुछ 90 फिल्म आशिकी से सुना देती हूँ और फिर मैं इनके बारे में और भी बातें आप सभी से करूंगी। एंजॉय कीजिए आप सब।

दोस्तों, हालांकि आशिक की सुपर डुपर हिट रही और उनको रातों रात लोकप्रिय भी बना दिया। इसके बाद इन्होंने गजब तमाशा किंग अंकल, खलनायिका, थिरुदा थिरुदा, द क्लाउड डोर और जन्म कुंडली जैसे फिल्मों में काम किया। लेकिन दोस्तों, इनका जो है लाइफ बहुत ही ज्यादा जो है बिगड़ गया। जी हाँ दोस्तों, 1999 में उन्हें फिल्मों के ऑफर तो आने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से अनु का स्टारडम ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाया और एक एक्सीडेंट में उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। इस सड़क दुर्घटना में अनु को कई गंभीर चोटें आई थी। यह हादसा इतना भयानक था कि अनु अग्रवाल का जो है महीना भर में कोमा में रही और उनकी याददाश्त बिल्कुल जा चुकी थी। अनु अग्रवाल का पूरा चेहरा डैमेज हो गया था। 3 साल तक उनका इलाज चला, सर्जरीज होते रहे। इस हादसे से उभरने में उन्हें कई साल लग गए और तब तक उनका फिल्मी करियर जो है बिल्कुल खत्म हो चुका था। एक इंटरव्यू में ई टाइम्स में इन्होंने कहा था कि इस भयानक हादसे के बारे में जब भी मुझे याद आता है, मैं नहीं जानती मैं कहाँ थी, जीवन या मृत्यु का मामला था, मैं कोमा में थी। सवाल मेरे ठीक होने का नहीं था, लेकिन क्या मैं जिंदा रहूंगी, इसका था। जी हाँ, उन्होंने 29 दिनों में जब वो कोमा पे थी, इनका पूरा शरीर जो है पैरालाइज्ड हो गया था। और इसके बाद में इन्होंने कहा कि मुझे वापस जो है बैक आने में, यानी कि बैक टू पेविलियन आने में सालों लग गए। और कहा जाता है फ्रेंड्स कि इसके बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। जी हाँ, 2021 में इन्होंने बिल्कुल संन्यास ले लिया, अपना सिर के बाल मुंडवा लिए। और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया कि मैं शुरू से ही योग करती थी और उत्तराखंड के एक आश्रम में योग सीखा। और अब अनु जो है इंडस्ट्री से दूर रहकर अपना एक फाउंडेशन चलाती है, जिसमें वो गरीब बच्चों को मुफ्त में योगा भी सिखाती है। और जो है

0: अपना दिन इसी तरह से बिताती है। तो वही कहते हैं ना कि हादसों के बारे में तो कोई कह भी नहीं सकता कि क्या हो जाता है, कब किसको क्या हो जाए, है ना दोस्तों। लेकिन हादसे तो होते रहे जिंदगी में, लेकिन अनु अग्रवाल हमें सिखा देती है या सिखा दी है कि जिंदगी को कुछ और तरह से भी जिया जा सकता है और खुद को अपने आप को जो है बिल्कुल वापस बैक ला के मुकम्मल करके खुद को खड़ा करना ही शायद जिंदगी जीने का नाम है। चलिए एक गीत हो जाए आप सभी के लिए। वैसे इन्होंने, मैंने कहा भी है कि बहुत कम फिल्में की हैं, खलनायिका और किंग अंकल एक और फिल्में रही इनके जिंदगी में, तो मैं यही फिल्मों से आप सभी को गीत सुना दूं। एंजॉय कीजिए
1: फिल्मी गाने के।

दोस्तों अनु अग्रवाल स्वस्थ रहे, अच्छा रहे और यूं ही बच्चों के साथ योगा सिखाते रहे। हम सबको जो है जिंदगी जीने का तरीका बताती रहे। हम उनसे ऑल द बेस्ट कहेंगे और साथ ही इस प्रोग्राम को अलविदा कहते हैं। और अब आप जो है सुन पाएंगे फ्रेंड्स, जी हाँ, निशी समाचार। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ, सुनते रहे अरुण एफएम को।

Çöplük var inek, abuk di tanig, ne digdi ne songam.

दोस्तों, अभी आप निशी कार्यक्रम सुन रहे थे। अगर आप हमारे निशी श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। जी हाँ, मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। अब आप आनंद उठा पाएंगे, जी हां फ्रेंड्स, हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमोन बेबी टिकेट टिकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

वाला शर्ट ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.

तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा yeah. पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शकर शकर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker yeah.

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी फिल्मी गीत, और अब से बस कुछ ही देर में आपका मन पसंदीदा प्रोग्राम यानी कि हेलो फरमाइश पेशे खिदमत करेंगे। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 11 बजे होती है। फोन नंबर है 03602292239 यानी 03602292239। हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश
3: जी, प्यार भरा नमस्कार। सर जी,
2: प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से।
3: मैं जवरडी जिला अमरावती महाराष्ट्र से गौतम राय बोले बात करो। सर जी,
2: गौतम राय जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनाइए।
3: धन्यवाद सर जी।
2: जी सुनाइए, कैसे हो आप?
3: बहुत मजे में सर जी, लेकिन हमारे यहाँ भीषण गर्मी चल रही है अभी।
2: ओके जी जी।
3: आप 45 से 46 डिग्री तापमान सेल्सियस चालू है सर जी अभी।
2: बाप रे। जी जी जी जी।
3: तो इसी गर्मी के मौसम में बस सहारा था आपका ईटानगर आकाशवाणी मिल रहा है सर जी।
2: क्या बात है।
3: बस आपके आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनना और बस घर में बैठ के।
2: ओके जी जी जी। धूप से बचिए, बाहर अगर काम ना हो तो ना निकले।
3: बिल्कुल बिल्कुल जी। सर जी, यही तो हम आकाशवाणी की जानकारी भी सुनते हैं सर जी।
2: जी जी जी जी। हाँ जी
3: सर जी, हमारा हेलो फरमाइश एकता ग्रुप है।
2: जी जी। हाँ जी।
3: तो हमारे हेलो फरमाइश एकता ग्रुप में आकाशवाणी ईटानगर का फोन नंबर डाला जाता है।
2: अच्छा जी जी जी जी।
3: ताकि इस फोन नंबर को देख के सभी साथी आपके आकाशवाणी ईटानगर को फोन लगे।
2: जी हाँ जी हाँ जी। कब कब रिकॉर्डिंग होती?
3: और जिन साथियों के फोन लगते उनको अगर किसी कारणवश प्रोग्राम सुनने को नहीं मिला तो उनकी रिकॉर्डिंग हम हमारे ग्रुप में डालते सर जी।
2: अच्छा, ग्रुप में भी डाल देते हैं आप?
3: बिल्कुल, ताकि वो सुन सके।
2: जी जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात है ये तो।
3: ये हमारे पूरे भारत में सबसे ऊपर हमारे एक्टिव श्रोता है आकाशवाणी, आकाशवाणी ईटानगर के प्रोग्राम सुनने वाले और कार्यक्रम में फोन लगाने वाले
2: जी,
3: सभी एक्टिव श्रोता है सर जी।
2: जी, सभी श्रोताओं को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए। तो गौतम जी, आज कहिए कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं?
3: खास करके तो आज हमारे मित्र लोकेंद्र वर्मा जी और अल्ता भुजरे सर जी, सभी हेलो फरमाइश एकता रेडियो ग्रुप श्रोता साथियों के लिए मकसद फिल्म का गाना सुनवाना चाहता हूँ सर जी।
2: ओके, मकसद फिल्म का कौन सा गाना?
3: वही गाना है किशोर कुमार यश जानकी की आवाज में, संगीत बप्पी लहरी का, और गीत के बोले हाय हाय हाय गर्मी है कहाँ है।
2: ओ हो, गर्मी के मौसम में गर्मी वाला गाना ही आप सुनना चाहते हैं?
3: बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो इस गीत का आनंद आप भी लीजिए सर जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
3: सुस्पष्ट आवाज में आकाशवाणी ईटानगर के प्रोग्राम हमारे महाराष्ट्र अमरावती जिले में सुनाई देते हैं।
2: क्या बात है। जी जी जी जी। हाँ जी,
3: बहुत ही सुस्पष्ट आवाज में सुनाई देते सर जी।
2: ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
3: बिल्कुल बिल्कुल। और हम बहुत सारे हमारे गाँव के रहो या हमारे ग्रुप सभी साथियों को हम प्रेरित करते हैं कि आकाशवाणी ईटानगर के प्रोग्राम सुनो, बहुत अच्छे रहते हैं, जानकारी भी अच्छी रहती है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। तो जी, गौतम जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी। नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: मैं काठमांडू जिला से बोल रहा हूँ, जवाहरलाल वर्मन।
0: जी। जवाहरलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: हाँ, थैंक यू सर। मेरा प्यार भरा नमस्कार लीजिए
0: जी। हमारी ओर से भी आपको बहुत ही प्यार भरा नमस्कार।
1: आपके
0: और
1: साथ। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में
0: जी
1: थोड़ा सा बात करने का मौका मिलता है तो दिन भर मन अच्छा रहता है
0: क्या बात है जी। हमें भी
1: और
0: बहुत ही
1: मन
0: अच्छा
1: में
0: लगता है
1: खुशियाँ भी बढ़ जाता है सर।
0: जी। और सुनाइए, क्या चल रहा है अभी?
1: अभी तो सर थोड़ा काम काज चल रहा है क्योंकि बारिश का मौसम आ गया ना,
0: जी हाँ जी
1: तो हाँ तो बारिश का मौसम आ गया तो थोड़ा सा घर का काम तो
0: हाँ
1: रहता
0: जी हाँ
1: है।
0: जी हाँ जी हाँ जी
1: हाँ
0: जी
1: तो
0: तो आज कैसा है मौसम? आज बारिश हो रही है कि धूप?
1: मौसम नहीं सर, आज कल रात भी बारिश नहीं हुआ।
0: अच्छा, बारिश हुआ नहीं ना अभी? ओके
1: नहीं सर,
0: ओके। हाँ जी, तो कहिए आज जवाहरलाल जी कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: आज महान संगीतकार राहुल देव बर्मन जी का सुर में सजा या दिल धड़कने वाला एक गाना सुना दीजिए।
0: अच्छा जी। हाँ जी।
1: वो गाना लिखा है महान गीतकार मजरू सुल्तानपुरी जी ने। हम किसी से कम नहीं फिल्म से
0: ओके।
1: आशा जी और रफी जी के जुगल स्वर में वो गाना, ये लड़का हाय अल्लाह
0: हाय
1: कैसे है
0: अल्लाह, कैसा
1: दीवाना,
0: है दीवाना। जी जी
1: कितना
0: जी
1: मुश्किल है तौबा किसको समझाना, धीरे धीरे दिल बेकरार।

0: होता है, होते होते प्यार होता
1: प्यार
0: है।
1: होता है। जी जी
0: जी हाँ,
1: जी
0: वो
1: हाँ
0: गाना
1: जी
0: सुना दीजिए।
1: हाँ जी जी
0: राहुल
1: हाँ
0: देव बर्मन दा का सजाया हुआ यंत्र संगीत का सुर एक अलग तरीका से सुर का झंकर होता है।
1: जी
0: जी हाँ, गाना में बर्मनदा का वो सुर बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने वो गाना में सुर डाला है।
1: जी
0: मुझे वो गाना सुना दीजिए
1: हाँ जी हाँ
0: और
1: जी
0: आप अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, ये
1: और
0: शुभ कामना करते हैं।
1: डेडिकेट कीजिए।
0: आओ सरी,
1: हाँ जी
0: डेडिकेट तो करना चाहता हूँ सर,
1: हाँ
0: पहले
1: हाँ
0: आपके
1: बहुत
0: और भाई
1: धन्यवाद।
0: प्रेमजीत चक्रवर्ती है, आशुतोष देवनाथ है, भुवन संगीता देवने, अविनाश भाइया है, और सुनने वाले सब लिसनर्स के लिए
1: सभी
0: सर।
1: को आप सुनाना चाहते हैं।
0: जी हाँ जी हाँ
1: जी जवाहरलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का
0: हाँ
1: गाना।
0: धन्यवाद सर,
1: ओके
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश,
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर।
1: हम आदरणीय बागरा साहब, स्वागत है। प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से और आकाशवाणी ईटानगर परिवार की ओर से।
1: जी हृदय से धन्यवाद। मैं
0: जी
1: आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपका वही पुराना जाना पहचान

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार। जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार। और कहिए कैसे हैं आप?
1: जी मैं तो बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर?
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। और मौसम भी बढ़िया होगा आपके वहाँ पे सिक्किम में?
1: मौसम तो बारिश हो रहा है इधर, तो अभी
0: अच्छा
1: थोड़ी देर
0: अच्छा
1: रुक
0: अच्छा
1: गया है अभी तो।
0: ओके। हाँ हमारे यहाँ पे भी बारिश हो ही रही है।
1: जी
0: जी मौसम बहुत ही बढ़िया है। तो हो
1: जी
0: जाए परिचय।
1: जी मैं सिक्किम से अर्जुन प्रधान बात कर रहा हूँ।
0: जी अर्जुन
1: दिल्ली
0: प्रधान जी।
1: तो जानते होंगे।
0: जी हमारे प्रिय श्रोता सभी लोग तो जानते ही हैं, फिर भी नाम तो बताना जरूरी होता है ना।
1: जी,
0: जी
1: परिचय
0: जी
1: तो देना
0: हाँ जी
1: पड़ता है ना।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी
0: तो अर्जुन जी कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: अभी तो ये बारिश का सीजन,
0: जी
1: तो बरखा याम यानी कि रेनी सीजन बोलते हैं
0: जी
1: ना,
0: जी हाँ जी हाँ जी
1: और इसी उपलक्ष्य में सुना दीजिएगा मोरा फिल्म से टिपू टिपू बरसा पानी।
0: ओके। टिप टिप बरसा पानी, वहां तो पानी बरस ही रहा है। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी सबसे पहले तो आपके लिए
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद जी, और पूरे ईटानगर परिवार को डेडिकेट है।
0: जी
1: और हम मेरा दोस्त है श्रीकांत जोशी महाराष्ट्र से, लुकिंदा वर्मा जी है, मूलचंद लोधी जी है, गौसदास लोधी जी है, ओम प्रकाश जी है, और हरिनारायण गुर्जर जी है, दीपेन कटारी जी है, गोलू कुमार जी है, गणेश दास जी है, बिहार से विमल ऋषि जी है, और हमारे पूनम जी कानपुर से हैं,
0: जी।
1: और हमारे मांगीलाल चंदेल भैया जी हैं, है ना, और जितने भी दोस्त हैं सभी के लिए
0: सभी को
1: डेडिकेट है
0: आप
1: मेरे
0: जी
1: तरफ
0: सुनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी कॉल करने के लिए। सुनते हैं मोहरा फिल्म का गाना। कॉल करने

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: मैं ओम प्रकाश नेमा, विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर।
0: जी। ओम प्रकाश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, सुनाइए।
1: बहुत अच्छी है सर, बस गर्मी पड़ रही है सर ज्यादा।
0: ओके, थोड़ा गर्मी से बच के रहिए ताकि आपको।
1: 44-43 चल रहा है हमारे यहाँ।
0: जी, ये तो भयंकर गर्मी है,
1: जी
0: तो गर्मी से बचिए और पानी खूब पीजिए।
1: जी
0: जी, और घर में बैठ के हमारा प्रोग्राम सुनते रहिए।
1: जी सर, आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं सर।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ओम प्रकाश जी, आज कहिए कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं।
1: आज हम सुनेंगे प्रेम कहानी, फिल्म का नाम है,
0: हाँ जी।
1: और गीत के बोल है, फूल आस्था फेंको बड़े नाजुक होते हैं।
0: ओहो हो।

0: बहुत ही बढ़िया गीत।
1: जी
0: और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: हम सुनना चाहेंगे शारदा प्रसाद प्रजापति है जी मथुरा से, उन्नू केंद्र वर्मा जी हैं, और भी लोग हैं, बहुत से मित्र हैं सर।
0: अच्छा, सभी मित्रों को आप डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: सभी मित्रों के लिए है डेडिकेट करते हैं, आपके लिए भी सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे भी डेडिकेट करने के लिए। तो ओम प्रकाश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: खुद घायल होते हैं फूल आहिस्ता फेंको।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: हरि नारायण गुजर बात कर रहा हूँ सर।
1: हरि नारायण जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप?
2: बढ़िया हूँ सर।
1: और मौसम?
2: मौसम तो गर्मी का है सर।
1: गर्मी है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
2: गर्मी बहुत पड़ गई सर।
1: ओके, हमारे यहाँ तो अभी बारिश है।
2: हाँ, आपके यहाँ तो बारिश होती रहती है 12 ही महीनों।
1: हाँ जी, तो थोड़ा धूप से बचिए।
2: बचने का तो सर कोई चांस ही नहीं है।
1: चांस ही नहीं है। ओके ओके, बाहर तो निकलना ही है।
2: बचने का तो कोई चांस ही नहीं है।
1: जी जी जी,
2: निकलना तो है धूप में, मगर थोड़ा ऐसा होता है कि जैसे सुबह के टाइम में जल्दी घर आ जाते हैं, फिर शाम के टाइम में थोड़ा लेट निकलते हैं घर से।
1: हाँ जी, हाँ जी, वो अच्छी बात है।
2: ये बचाव अपना रहता है बस।
1: जी जी जी जी,
2: गर्म हवाएं बहुत तेज चलती दोपहर में।
1: ओके, तो घर में रहिए और हमारा आकाशवाणी ईटानगर का हेलो फरमाइश सुनिए।
2: वो तो सुनता रहूँ, एफएम को ईटानगर को सुनते रहते हैं सर।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: और सर आपसे बात होती तो और भी आनंद आ जाता है।
1: क्या बात है, हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है जी।
2: सर बहुत बुरा नाम है सर आपकी, मजा आता है मेरे को बात करने में। आपको फरमाइश बताया देता हूँ सर।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी।
2: फिल्म का नाम है मेरी बीवी का जवाब नहीं, और गाने का टाइटल सॉन्ग है सर ये।
1: अच्छा, मेरी बीवी का जवाब नहीं,
2: वो लाजवाब ही है, जवाब नहीं है।
1: और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को आप?
2: सर दोस्त है दिल्ली से, रमवीर जी है, नरेश प्रजापति जी हैं, ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी, नरेश प्रजापति जी हैं, इसके अलावा गया लोधी, मंगला चंदेल जी हैं और प्रेमराज विश्वकर्मा जी हैं। सर आप भी हमारे साथ इस गाने को सुनिए, बड़ा मजा
1: जरूर
2: आएगा।
1: सुनेंगे। ओके, जरूर सुनेंगे, कभी सुना नहीं मैंने ये गाना, तो इस
2: जी
1: बार
2: आप
1: पहली बार
2: सुनिए।
1: सुनूंगा जी। तो हरिनारायण जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
2: ओके सर, धन्यवाद।
1: ओके, धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर जी। भाई
0: नमस्कार, आकाशवाणी ईटानगर। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सातारा से तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ सर जी। शुक्रिया,
0: जी तुकाराम यादव जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जी,
1: धन्यवाद।
0: और कैसे हो आप?
1: हम ठीक है, आप कैसे सर जी?
0: जी मैं तो बढ़िया हूँ। आपके
1: और
0: वहाँ
1: आपका
0: मौसम कैसा है
1: ईटानगर
0: अभी?
1: मौसम क्या? गर्मी बहुत है अभी हमारे
0: गर्मी?
1: इधर,
0: ओके,
1: 38 30 40 तापमान
0: बाप
1: रहता है
0: रे।
1: हमारे इधर।
0: ओके, तो गर्मी से थोड़ा बचिए।
1: जी,
0: और काम ना हो तो घर पे रहिए और हमारा आकाशवाणी ईटानगर का हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनिए।
1: हाँ सुनते मोबाइल ऐप।
0: ओके, ऐप पे सुनते हैं आप। तो कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
1: फिल्म बना हुआ कारवा,
0: ओके, कारवां फिल्म का कौन सा गाना?
1: गोरिया कहा तेरा जैसे रे।
0: ओ जी, बहुत ही बढ़िया गीत सुना है आपने। और किन लोगों को सुनाना
1: हाँ
0: चाहेंगे इस गीत को?
1: सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: धन्यवाद जी।
1: हमारे मित्र लोकेंद्र वर्मा जी, गौतम राय बोले जी, सुनील झा जी, दिलीप पहुजा जी, गंगाधर सावनकर जी, प्रियस आय राजशेखर जी, विठ्ठल पवार जी, किरण शिंदे जी, गौतम कोकाटे जी, विकास शेड़के जी, श्रीकांत भंडारे जी, हम सब एक गीत सुनना चाहते हैं।
0: ओके, इन सभी के साथ आप सुनना चाहते हैं। तो तुकाराम जी, कॉल
1: शुक्रिया
0: करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: शुक्रिया, धन्यवाद।
0: ओके, धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश,
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार। आकाशवाणी ईटानगर हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर। सर, ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ।
0: जी भगवान सिंह जी, काफी दिनों के बाद आपने हमें कॉल किया।
1: हाँ सर, बहुत सारे दिन हो गए सर, 5-6 महीने से ऊपर हो गए।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहीं बिजी थे आप?
1: जी सर, मकान बन रहा था इसलिए बिजी थे सर।
0: ओके ओके ओके। जी जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और बन गया या फिर अभी?
1: सर कंप्लीट हो गया है, हमने कृषि फार्म पर खेत पर बनाया है।
0: ओहो, क्या बात है, क्या बात है जी।
1: सर इस वक्त तो सर हमारे इधर 40 टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी बहुत काफी पड़ रही है सर हमारे इधर।
0: बाप रे। जी जी जी जी
1: जी और लू भी चलती है दिन में सर।
0: ओहो,
1: जी हाँ सर, पानी का ज्यादा पीते हैं और गमछे वगैरह बांध के खेत पर निकलते हैं।
0: ओके।
1: गर्मी का पूरा ख्याल रख रहे हैं, अपना अपना भी ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि गर्मी बीमार कर देती है अगर
0: जी
1: ज्यादा
0: जी जी
1: पड़ती है
0: जी
1: तो सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात जी।
1: जी
0: तो
1: तो सर मैं फिल्म का नाम बता देता हूँ
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: आपको।
0: बिल्कुल।
1: फिल्म का नाम है मोहरा। वो गाने के बोले ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, और हमारे लोकेन वर्मा जी है उज्जैन से, उनको डेडिकेट रहेगा। और
0: ओके।
1: रमेश प्रजापति, केसे सिंह राजपूत।
0: ओके, तो भगवान सिंह जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: धन्यवाद।
0: ओके, धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्ते, खम्मा घणी हुकम।
0: नमस्कार खम्मा घणी,
1: कैसे हो सर जी?
0: जी बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो?
1: हाँ, मैं जिला बालोतरा राजस्थान से आपका नियमित श्रोता मोहनलाल प्रजापत।
0: ओके मोहनलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद जी, शामिल करने के लिए भी धन्यवाद
0: जी। और गर्मी?
1: हाँ, तो 45 डिग्री के आसपास है और अभी आंधी का अलर्ट भी हो चुका है।
0: ओके बापरे बापरे, जी जी जी
1: जी आंधी, और आंधी आएगी तो थोड़ी राहत मिलेगी।
0: अच्छा, अभी तक बारिश हुई नहीं आपके वहाँ?
1: नहीं, बारिश तो 2 महीने कम है, लेकिन अभी मतलब आंधी आती रहती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी जी तो अपना ख्याल रखिए और कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए।
1: फिल्म का नाम है सर जी उपकार। उपकार का कोई भी गीत,
0: उपकार फिल्म का कोई भी गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी
0: जी जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: माणक दरिया, उषा बाला देवी प्रजापत, और हेलो फरमाइश का रेडियो के तमाम साथी,
0: तमाम साथियों को आप सुनाना चाहते हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। सुनते हैं आपके पसंद का।

0: क्या।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश, नमस्कार खम्मा घणी सा।
1: नमस्कार खम्मा घणी, कैसे हो?
2: बिल्कुल बढ़िया जी, बढ़िया
1: बढ़िया है।
2: आप बताइए।
1: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। और
2: जी,
1: मौसम का हाल क्या है?
2: मौसम के भी गर्मी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चल रहा है 45 के आसपास।
1: बाप
2: रे, कड़ाके वाली गर्मी पड़
1: जी,
2: रही है।
1: जी जी जी
2: आपके वहाँ का?
1: हाँ हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है।
2: अरे वाह क्या बात है, थोड़ी सी
1: जी
2: हमारे भेज दीजिए।
1: हाँ जी जरूर भेजेंगे, आप चिंता मत कीजिए। गाने के साथ साथ मैं आपको बारिश भी भेज देता हूँ।
2: हाँ, और
1: जी
2: मैं तो देखिए ये है कि बेताब रहता हूँ इस फोन इन प्रोग्राम के लिए कि कब
1: जी
2: बोके बागरा जी से बात हो, कब फरमाइश गीत बजे। और मतलब कई अरसे से, कई सालों से आपके आकाशवाणी
1: जी
2: ईटानगर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: कई दोस्तों की मंडली थी वो तो कहीं ना कहीं तक कम हो गई, कहीं अपने अपने काम धंधों में फंसे हुए, कोई अपनी फैमिली
1: हाँ
2: को रिलेटेड समस्याओं में फंसे, कोई कोई अपने धंधे अपने
1: जी
2: बिजनेस में फंसा हुआ। लेकिन मैं नहीं भूलता, मुझे
1: ओ
2: सुनना है।
1: क्या बात है, क्या बात है, इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसी तरह से ये प्यार
2: और
1: बनाए
2: मैं
1: रखें।
2: नाम नहीं बताया मैंने, मैं भवानी सिंह राठौड़ सुजानगढ़ राजस्थान से बात कर रहा हूँ,
1: जी
2: आपका
1: जी
2: नियमित
1: जी
2: होता।
1: जी जी जी मुझे तो पता है, लेकिन
2: आज
1: आप
2: आज मैं ना इस प्रोग्राम में आज चलो
1: चले।
2: मैं फेवरेट गानों में ना एक कुमार सानू अलका याग्निक का कोई दोनों का मैच करता हुआ गाना हो ना एक बजाते
1: अच्छा
2: थे।
1: अच्छा अच्छा जी जी जरूर मैं
2: और ये
1: जी
2: गाना आपको और पूरी आकाशवाणी परिवार को डेडिकेट है मेरी ओर से। ठीक
1: ओके, तो कॉल करने के लिए
2: है,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके
2: शुक्रिया।
1: पसंद का गाना।
2: ठीक है।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 11 बजे होती है। फोन नंबर है 03602292239 यानी 03602292239।
1: हेलो फरमाइश।

दोस्तों अभी आप आनंद उठा रहे थे, आप सभी का बेहद ही चहेता प्रोग्राम जी हाँ हेलो फरमाइश के साथ, और इसे आप तक पहुंचाया जा रहा था एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। तो दोस्तों अब आप सभी को सुना दे कुछ बेहतरीन नगमों को, एंजॉय कीजिए।

जगाती है कयामत कोई।

0: दोस्तों, मिस्टर इंडिया के इस बेहद चुलबुले गीत के साथ ही हमारी आज की हिंदी फिल्मी गीतों का सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। आप से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे। जी हाँ, 8:30 पर आप सुन सकते हैं पाश्चात्य संगीत का कार्यक्रम। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Hello guys and welcome to the Western Music Program only on Akashvani Itanagar. I'm Sam, your host for the day. Today's playlist takes us through the many shades of love and healing. We begin with Rihanna, an artist who knows exactly how to blend confidence with vulnerability. Needed Me is about recognizing your worth and walking away from something that no longer serves you. Sometimes the strongest thing we can do is realize we deserve better. Needed Me by Rihanna.

दोस्तों, अभी आप आनंद उठा रहे थे पाश्चात्य संगीत का कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडी से, और इसे आप तक पहुंचाया जा रहा था FM बैंड के 103.1 MHz पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण FM से। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। तो दोस्तों, रात्रि के ठीक 9 बज चुके हैं और 9 बजते ही वक्त हो जाता है हमारे भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट का। जी हाँ दोस्तों,

0: दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट में। ये भले ही भूले बिसरे गीत क्यों ना हो लेकिन है सदाबहार और हम इन्हें हमेशा अपने होठों पर गुनगुनाना बेहद पसंद करते हैं। और तो और बात यह है कि इन गीतों ये ऐसे गीत होते हैं दोस्तों जो आज भी ट्रेंडिंग हैशटैग पे ये इंस्टा और फेसबुक की शोभा बढ़ाते हैं, है ना। तो चलिए हम भी अपने भूले बिसरे गीतों की कारवा लेकर हाजिर हो चुके हैं आप सभी के खिदमत में। तो एंजॉय कीजिए, एक से बढ़ के एक गीत हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं दोस्तों। वैसे कभी कभी कोई गीत सिर्फ गीत नहीं होता दोस्तों, वो किसी की याद, किसी की मोहब्बत और किसी के इंतजार की आवाज बन जाता है। अब जो मैं गीत पेश खिदमत करने वाली हूँ, इस गीत में छुपी है वो मासूम सी शिकायत जिसमें प्यार भी है और बिछड़ने का डर भी। तो अगर आज आपके दिल में भी किसी की याद दस्तक दे रही है तो आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगली गीत जो मैं पेश खिदमत करने वाली हूँ शायद आपके दिल की ही बात कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये हो सकता है। एंजॉय कीजिए इस बेहद खूबसूरत सी गीत को।
1: लेटेस्ट अपडेट।

दोस्तों आप सब आनंद उठा रहे हैं। जी हाँ, भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट के साथ और इसे आप तक पहुंचाया जा रहा है एफएम बैंड के 103.1 MHz पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। दोस्तों कभी कभी जिंदगी की कहानी कितनी अजीब हो जाती है। कुछ रिश्ते बिना किसी नाम के हमारे दिल में जगह बना लेते हैं दोस्तों, और कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी हमेशा याद रहती है। जी हाँ, जहां प्यार है उलझन है और उन भावनाओं की कसक है जिन्हें हम शब्दों में कह नहीं पाते, वो शायद गीत के रूप में निकल ही जाते हैं, है ना। तो कुछ दास्तानें पूरी नहीं होती, लेकिन शायद उनकी अपनी खूबसूरती इसी अधूरेपन में ही छिपी होती है। तो चलिए एक और गीत आप सभी के लिए मैं प्ले कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बेहद पसंद आने को है। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत सौतन फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारे आज के भूले बिसरे गीतों का ये सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, और जाते जाते ये गीत हमें बता के गई है कि सचमुच में जिंदगी प्यार का ही तो गीत है, जिसे हर पल निभाना पड़ेगा। हम भी तो वादा करते हैं निभाने की आपके साथ दोस्तों। वैसे आप आनंद उठा रहे थे इस कार्यक्रम को एफएम बैंड के 103.1 MHz पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे आज के इस तीसरे प्रसारण सेवा को आपने भरपूर एंजॉय किया होगा और हम आप सभी का मनोरंजन करने में सफल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही तमाम ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों को लेकर आपके खिदमत में एक बार

फिर हाजिर हो जाएंगे कल सुबह के ठीक 5:48 पर। कल का सवेरा आपके जिंदगी में ढेर सारे खुशियां लेकर आए। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सेहतमंद रहे और जी हाँ, अरुण FM को सुनते रहे और प्यार बरसाते रहे दोस्तों। और वो कहते हैं ना कि जिंदगी में सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती, इसलिए आप अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत एक इतिहास ना बन जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी पॉजिटिव थॉट हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं ताकि आपका जिंदगी कल का सवेरा जो है आपके जिंदगी का वो बिल्कुल एक पॉजिटिव थॉट के साथ बन जाए और आप इतिहास रच दे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप अपना भरपूर ख्याल जरूर रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ संचर निष्पादक गए रते, तकनीकी अभियंता ताना आतुम तथा स्टूडियो और HPD में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी की मंगल कामना करते हुए अब हम अपनी तीसरी प्रसारण सेवा को यहीं पर संपन्न करेंगे और आगे के सफर में जारी रखने के लिए आप FM गोल्ड पर हमें सुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ ले लेते हैं हम अलविदा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।

0: विभाजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज,
0: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की चार प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदाओं से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना है। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि यह अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने पिछले एक वर्ष के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमान की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनाव में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणियों का जिक्र पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश में ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की आवश्यकता है।
2: जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई हैं, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अलावा पूर्व पुलिस महानिदेशक और पूर्व CBI निदेशक शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की आवश्यकता है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। BRICS nations today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today said, BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the UN Framework Convention on Climate Change, and its Paris Agreement. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate challenges while advancing sustainable development and poverty eradication. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS ministers also expressed their appreciation for India's leadership in advancing the circular economy as an enabler of sustainable development. Earlier speaking at the meeting, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupender Yadav, emphasized that environmental action must remain people-centric, sustainable and responsive to the realities of developing countries.
1: We draw inspiration from the vision articulated by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. I quote, our goal will be to redefine BRICS as a building resilience and innovation for cooperation and sustainability. Just as we brought inclusivity to our G20 presidency and placed the concern of the global south at the forefront of the agenda. Similarly, during our presidency of BRICS, we will advance in this forum with a people-centric approach and the spirit of humanity first.
3: India Today said that the credibility and robustness of its election machinery are well established globally. Spokesperson of the Ministry of External Affairs, Ranveer Jaiswal, stated this while briefing media in New Delhi this evening. Mr. Jaiswal was responding to US President Donald Trump's praise for India's election system and his reference to Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's remarks on the lack of voter identification in US elections. On the massive earthquake in Indonesia, Mr. Jaiswal said that India is deeply saddened by this tragedy. On reports of India receiving energy requests from Bangladesh, Mr. Jaiswal said India has an ongoing energy cooperation with the neighboring country. On Pakistan's reaction to India's claims over Shehzad Bhatti terror network, the spokesperson said India takes issue of terrorism very seriously.
4: Terrorism matters. These are very serious things. We take it very seriously. We want the global community to understand the gravity of such actions. India has been hit hard by terrorism. We have, over the last several years, taken a lot of effort to galvanize global action, strengthen global action to fight terrorism, including cross-border terrorism. And whatever action is required to be taken on that account to defeat the scourge of terrorism, that we'll continue to take.
3: On protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, the MEA spokesperson said many lives have been lost there and the situation is such that the local population needs and deserves sympathy and solidarity from the international community. The Supreme Court today said it would constitute a high-powered committee comprising retired Apex Court and High Court judges, a former DGP and an ex-CBI director to examine allegations of police excesses against students during recent protests in Delhi and violence against police personnel. A three-judge bench headed by Chief Justice Suryakant said an order for constituting the committee would be released tomorrow after it receives suggestions from different parties on other members to be included in the panel. Pakistan's Supreme Court today ordered authorities to transfer jailed former Prime Minister Imran Khan to Islamabad's Shifa International Hospital for a comprehensive medical examination within the next few days. Local media reported that a three-member bench passed the order while hearing several petitions seeking Pakistan Tehreek-e-Insaf founder Imran Khan's hospitalization and meeting with his family. And in the BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Trisha Jolly and Gayatri Gopi Chand have advanced to the pre-quarterfinals in Delhi. The Indian duo outshined US's Lauren Lam and Alison Lee in straight games. Ace shuttlers Lakshya Sen and Unnati Huta have sailed into the second round of respective singles event. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई में विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना की। भारत ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर स्थापित। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, अमेरिका के साथ सभी शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। और गोल में पुरुष टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका के खिलाफ भारत की पकड़ मजबूत। 372 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए लचीलापन तथा इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा के प्रति लचीलापन, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
3: जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए। उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई हैं, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडैरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
0: भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी ISMR का चौथा दौर बृहस्पतिवार को सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। भारतीय पक्ष से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद इसमें भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अपनी इस यात्रा के दौरान ये मंत्री अपने समकक्षों से बातचीत करेंगे और सिंगापुर के नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का तंत्र नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं तथा चिकित्सा, कौशल विकास और स्थिरता पर विचार विमर्श से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी का रोड मैप तैयार हुआ। इसका अनावरण पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग की भारत यात्रा के दौरान किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के चौथे दौर से दोनों पक्ष चल रही विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा कर सकेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं हिमानी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। न्यायालय ने कहा कि इमरान खान के स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किया जा रहा है। ईरान ने दोहराया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य समुद्री यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
5: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए हॉर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी।
0: गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। मैच में भारत की पकड़ मजबूत हो गई है। भारत को जीत के लिए अब 6 विकेट की दरकार है जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। आज भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई। भारत को पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त मिली थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा पर्यावरण संबंधी कार्रवाई में विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना की। भारत ने कहा देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर स्थापित। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। और गोल में पुरुष टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका के खिलाफ भारत की पकड़ मजबूत। 372 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन 4 विकेट पर 84 रन बनाए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वीसी प्रमोद विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. BRICS nation reaffirm commitment to environmental protection and sustainable development. New Delhi stresses environmental actions must address needs of developing countries. India says credibility of country's election machinery well established globally as US President Donald Trump praises poll system. Pakistan's top court orders transfer of jailed former Prime Minister Imran Khan to hospital for medical examination. Iran reiterates Strait of Hormuz to remain closed till all its conditions agreed with US are fully met. And in men's cricket, India tightened grip on Gaul test against Sri Lanka. Chasing a 372 run target, hosts reel at 84 for 4 at stumps on day 4. BRICS nation today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today said, BRICS nation also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Framework Convention on Climate Change and its Paris Agreement. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate challenges while advancing sustainable development and poverty alleviation. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS ministers also expressed their appreciation for India's leadership in advancing the circular economy as an enabler of sustainable development. Earlier, speaking at the meeting, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupinder Yadav emphasized that environmental action must remain people-centric, sustainable and responsive to the realities of developing countries.
7: We draw inspiration from the vision articulated by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. I quote, our goal will be to redefine BRICS as a building resilience and innovation for cooperation and sustainability. Just as we brought inclusivity to our G20 presidency and placed the concern of the global south at the forefront of the agenda. Similarly, during our presidency of BRICS, we will advance in this forum with a people-centric approach and the spirit of humanity first.
6: India today said that the credibility and robustness of its election machinery are well established globally.